नमस्कार, FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते यह आकाशवाणी जलंधर केंद्र दा FM रेनबो चैनल है। अज सोमवार है, शक संवत 1947 दे जेठ महीने दी 11 तारीख है। तारीख तद अनुसार ईस्वी सन 226 दे जून महीने दी पहली तारीख है। इस वेले सवेर दे 5:58 हो रहे हैं। साड़ी अज दी सभा हुण शुरू हुंदी है। FM रेनबो अपने सारे स्रोतियां दा निघा स्वागत करता है।

एफएम न्यूज़ हेडलाइन तुसी सुनोगे आप अपने टाइम ते ए सन साढ़े आज रात 11 बजे तक दे प्रसारित होने वाले खास प्रोग्राम ते उन्हां दा प्रसारण समा ते हुण तुसी सर्वन करोगे भगती रस दा प्रोग्राम वंदना।

लो जी, गुड मॉर्निंग जलंधर प्रोग्राम कुछ ही देरी तो बाद वापस आ गया। लो जी, समा हो गया 7:03। तुसी सारिया ने ट्यूनिंग किया 102.7 मेगाहर्ट्ज़ दे नाल नाल 103.6 मेगाहर्ट्ज़ वे। मैं तुहाड़ी आज दोस्त राहिल दी प्रोग्राम शुरू हो गया है गुड मॉर्निंग जलंधर। ते फिर जलंधर वाली होगी कि नहीं गुड मॉर्निंग।

जी दोस्तों, तुसी सारिया ने ट्यूनिंग किया 102.7 FM दे रेनबो दे नाल नाल 103.6 MHz वी ते बने हुए अपनी आरजे दोस्त राहिल दे नाल। प्रोग्राम केड़ा चल रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हो, यानी कि गुड मॉर्निंग जलंधर। देखो गल हुई सी कि अज की खास है, अज बहुत खास दिन है। मैं कहनी एक जून जड़ा है ना, छुट्टियां तो लगती है गई है। छुट्टी छुट्टी मैं बार बार कर रही हूँ क्योंकि मैनू एक्साइटमेंट है, पर मेरी छुट्टियां नहीं पई हैं, फिर की कर सकते हैं।

एक जून आज की तारीख, यानी ये कैलेंडर का एक बहुत ही खास दिन है। आज पूरी दुनिया मना रही है वर्ल्ड मिल्क डे। जब भी दुध की गल आती है, सारे बच्चों की ना यादा ताजी हो जाती है, क्योंकि कई बच्चों ना दुध के ना सुन के ही मतलब एक चिड़चिड़ाहट जी हो जाती है, मतलब नक तो सिकड़ ही जाती है सारे। हम सारे की गल भी नहीं कर सकते कि ना बहुत से जो है दोस्त हैं उन्होंने दुध पीना बहुत पसंद है, पर कई नहीं है। तो अज का ये खास जोड़ा दिन है, एक होर खास थीम के नाल मनाया जा रहा है।

मुफ्त कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-44-54 तो प्राप्त की जा सकती है। एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। रुक तो जा तू है गॉन, ये तो बता तू है कौन, कहां से आई है कहां तो जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी।

गायिका सुमन कल्याणपुर दा कल मुंबई विच 99 साल दी उम्र च देहांत हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ते ऑस्ट्रेलिया दे उप प्रधानमंत्री ते रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लस अज नवी दिल्ली विच दूजी भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्री पदरी गलबात दी सह प्रधानगी करनगे। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बत्तू ने अनुसूचित जातियां बारे अपने हालिया विवाद बयान ते अफसोस प्रगट करदियां मुआफी मंगी है। पंजाब दे माड़ मुड़ वसेवा ते आफत प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने दसिया है कि सरकार ने हड़ रोकू कारजां ते सूबे भर विच किसी भी कुदरती आफत नाल प्रभावशाली ढंग नाल निपण लई अगाऊं 146 करोड़ रुपए जारी किए ने। मौसम विभाग ने 4 जून तक पंजाब हरियाणा अते चंडीगढ़ के वख-वख हिस्सों में गरज चमक अते तेज हवावां चलन संबंधी येलो अलर्ट जारी किया है। क्रिकेट विच रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स नूं 5 विकटां नाल हरा के आईपीएल 2026 का खिताब जीत लिया है। भारत दे मोगली वेंकटराम ने हांगकांग विच एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप विच मर्दा दी 800 मीटर दौड़ विच सोने दा तगमा जीतया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली विच म्यांमार दे राष्ट्रपति नाल दुवली गलबात करनगे। केंद्र खादा दी संतुलित अते सही वरतों नूं उत्साहित करन लई अज मध्य प्रदेश दे रायसेन जिले तो खेत बचाओ मुहिम दी शुरुआत करेगा। 10 राज्यां विच 24 राज सीटां दी चोण संबंधी नोटिफिकेशन अज जारी किया जाएगा। प्रसिद्ध

जी आई नू जी आई नू जी आई नू प्रोग्राम शुरू हो गया दिल अपना पंजाबी यानी कि दिल तो दिल तक दिया गल्लां होने वाली ने ते तुसी सारे ने ट्यून किया 102.7 मेगाहर्ट्ज नाल नाल 103.6 मेगाहर्ट्ज भी ते तुसी बड़े हुए हो आकाशवाणी दे नाल ते नाल अपनी आरजे दोस्त राहिल दे नाल

वंस अगेन वेलकम बैक है जी। ट्यून इन किता 102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा है गीत बहार ते मैं हाँ जी तुहाडी अपनी साक्षी तुहाडे नाल। वैसे लाइफ के बच्चे कुछ नवा मतलब करन नू मिल जाए, कोई नवा चैलेंज मिल जाए, कोई नवा काम करन नू मिल जाए, थोड़ी थोड़ी घबराहट भी होंगी है पर कितने ना कितने एक वक्री खुशी भी होंगी है। और वो घबराहट होनी ना मतलब नवे चैलेंजेस ते मतलब लाजमी है, जरूरी है, कितने ना कितने वो पॉजिटिव इंपैक्ट ही पैंदा है साड़ी आउटपुट ते। कुछ इदा का ही होया से फिल्म पुकार आई सी जिदे विच अनिल कपूर सी, माधुरी दीक्षित सी ते नाल ही नाल मतलब है फिल्म प्रभु देवा भी सी दे विच एक गाने दे विच। ते उस फिल्म दे विच एक गाना सीगा, वो गाना मैं तुहानू हुणे प्ले करके सुनावांगी। बट उस तो पहले एक छोटी जी चीज़ जो उस गाने दे अराउंड घूमती है, जदों यह गाना माधुरी दीक्षित नू ऑफर होया, उन्हां नू पता लग्या कि उन्होंने प्रभु देवा दे नाल इस गाने दे विच डांस करना है, तो उन्होंने दस्या कि बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुके से बट कितने ना कितने एक्साइटिड भी सीगे कि हाँ उन्होंने उन्होंने डांस करन दे नाल मतलब मौका मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने डांस मूव्स उन्होंने एनर्जी लेवल मतलब वक्रा ही है प्रभु देवा का। तो माधुरी दीक्षित भी नो डाउट बहुत अच्छी डांसर हैगी ने, पर उन्होंने कहा कि जो उन्होंने यह चीज़ का पता चलिया ना कितने थोड़े परेशान सके, थोड़े थोड़े डर रहे थे, तो अपना लेवल उन्होंने नाल मैच करन वास्ते मतलब किसी तरह की भी कोई कमी ना लगे, तो पूरे 9 दिन उन्होंने इस गाने की रिहर्सल जी ना वो की। फाइनल आउटपुट तो साढ़े सारिया के सामने ही है जो यह गाना रिलीज़ होया सी, माधुरी दीक्षित तो प्रभु देवा इस गाने के डांस करते हुए देखना मतलब अपने आप दे विच बा कमाल सीगा। दोनों का डांस मूव्स जिहड़ा सी, डांस स्टाइल जिहड़ा सीगा, मतलब एक पल ले भी नज़रां जिहड़ियां सीगियां ना वो स्क्रीन तो हट ही नहीं रही सी।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

केंद्रीय रेल राज मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अनुसूचित जातियां बारे अपने हालिया विवादित बयान दे अफसोस प्रकट करदिया मुआफी मंगी है। पंजाब दे माल मुड़ वसेबा अते आफत प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने दस्या कि सरकार ने हड़ रोक कारजा अते सूबे भर विच किसे भी कुदरती आफत नाल प्रभावशाली ढंग नाल निपटन लई अगाऊ 146 करोड़ रुपए जारी किते ने। मौसम विभाग ने 4 जून तक पंजाब हरियाणा अते चंडीगढ़ दे वख-वख हिस्सेयां विच गरज चमक नाल तेज हवावां चलन संबंधी येलो अलर्ट जारी कीता है।

हाँ जी, लाइव फोन इन प्रोग्राम पंजाबी तड़का दी शुरुआत हो चुकी है। ट्यून इन किया हो जी तुम 102.7 FM रेनबो ते मैं हाँ जी तुहाडी अपनी साक्षी। ते हुण ओ प्रोग्राम जिहदे विच तुहाडे पसंद दे फरमाइशी गीत जिहड़े ने खास इस प्रोग्राम दे विच शामिल होणगे। सो तुहाडे गीत ते तुसी प्रोग्राम दे विच किद्दां शामिल होना है उहदे लई साडा नंबर है 0181-23-42-174 यानी कि 01812342174 है साडा नंबर रहेगा। फटाफट नंबर मिलाओ ते प्रोग्राम दे विच शामिल हो जाओ, साडे नाल गल्लां करो ते अपनी पसंद दे फरमाइशी पंजाबी जिहड़े गीत ने ओह तुसी इंजॉय करो। सो प्रोग्राम दी शुरुआत करदे हां जी हंसराज हंस दी आवाज़ दे नाल इस प्यारे जिहे म्यूजिकल ट्रैक दे नाल।

0: जी लाइव फोन इन प्रोग्राम कर रहे हो तुसे इंजॉय तो साड़ा नंबर है 0181 2342 174 यानी कि 01812342174 पंजाबी तड़का प्रोग्राम चल रहा है जी ट्यून इन किया 102.7 FM रेनबो तो मैं हाँ जी थोड़ी अपनी दोस्त साक्षी तो अगले कॉलर दोस्त केड़े आए ने करते हैं इन्होंने गलबात। सत श्री अकाल जी नमस्कार
1: अपने आप देना जो सा किस्मत चाहिए।

0: मेरा छोटा भरा है ना, बहुत शरारती है। कॉलेज विच मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा नु दिखाउंदा सी। कल मैं लाइट दे बिल ते जीरो अमाउंट वेखी। मैं सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किता होगा, नहीं तो जीरो बिजली बिल किवें पॉसिबल है। पूछया ते आखन लगा, वीर जी सब ऊपर वाले दी मेहर है, सोलर पैनल है ना। मैं क्या, ओहे ठीक है पुत्र।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

0: घर खर्चे दे पैसे दियो हस्बैंड जी।
1: ए राशन दे 15,000, सब्जियां दे 2,000
0: ते बिजली दे बिल दे।
1: हुन 0 रुपए की मैं दवा।
0: ओहो भुली गई सी, हुन ता सोलर पैनल लग गए है ना, ता फिर जो बाकी बचे हुए 4,000 ने उसदी शॉपिंग करन चलिए।
1: जरूर, पीएम सूर्य कर मुफ्ती बिजली योजना

वैसे मतलब गर्मी दे मौसम दे विच दिल तां किचन ते जान तो भी बचन नहीं करता है। मतलब दिमाग दे विच आई आंदा है कि कुछ इंस्टेंट जां क्विक जी रेसिपीज होन जो खान दे विच विस गर्मी दे मौसम दे विच वधिया होन ते नाल ही नाल सानू ज्यादा देर रसोई दे विच खड़े हो के काम भी ना करना पाए। सो असी हमेशा ही मतलब दिमाग दे विच इदां दी चीज़ां चल रही होंदियां ने कि कोई इदां दी डिशेज़ होन जो बहुत जल्दी बन भी जान, टेस्टी भी होन ते बहुत ज़्यादा हैवी भी ना होन अपने आप दे विच। ते फिर जदों इदां दियां चीज़ां चल रही होन ना ते राजस्थान दी एक पारंपरिक पापड़ दी सब्जी जिहड़ी है ना वो परफेक्ट ऑप्शन है अपने आप च। मतलब घर दे विच जदों सब्जी भी ना पई होवे ते अचानक गेस्ट आ जान या फिर अपने लिए भी मैं क्या जी बनानी होवे तां बहुत ही वधिया है सब्जी जिहड़ी हैगी है ते इहदा टेस्ट भी जिहड़ा हैगा हल्का मसालेदार, खट्टापन भी इहदे विच हुंदा है ते बेहद ही लाजवाब भी है खाण दे विच। ते इनग्रीडियंट्स की गल करिए, समग्री इहनूं बनाउण वास्ते की चाहिए है, बहुत ही आसान जिहियां चीज़ां ने जो साडे किचन दे विच ऑल टाइम अवेलेबल हुंदियां ने। उहदे विच है जी 4 तों 5 जिहड़े अपने सेकदे आ ना असीं पापड़ भुन्नण वाले पापड़, वह चाहिए ने। 1 कप दही का चाहिए है, 2 छोटे चम्मच बेसन ते 2 वड्डे चम्मच जिहड़े ने घ्यो या फिर तेल जिहदा भी तुसीं इस्तेमाल करना चाहो, ते 1/2 चम्मच जिहड़ा हैगा है जीरा चाहिए है, 1/4 स्पून जिहड़ी राई की चाहिए है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1/2 ਸਪੂਨ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ 1 ਚਮਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਿਰਚ, ਅਤੇ 1 ਚਮਚ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ, ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ, 2 ਕੱਪ ਪਾਣੀ, ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। 4 ਤੋਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਪੜ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵੇ 'ਤੇ ਸੇਕ ਕੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ 1 ਕੱਪ ਦਹੀਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, 2 ਵੱਡੇ ਚਮਚ ਬੇਸਨ, 2 ਵੱਡੇ ਚਮਚ ਤੇਲ।

या फिर घ्यो, अद्धा चम्मच जीरा, 1/4 स्पून जिहड़ी है सानू राई दा चाहिदा है, अद्धा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 2 कप पानी, ते सजान वास्ते सब्जी नू गार्निश करन वास्ते खूब सारा फ्रेश कोरिएंडर हरा धनिया। सो एक क्विक जी रेसिपी है, बनानी किदा है दसदी हां बस इस गीत तो बाद।

वंस अगेन वेलकम बैक है जी ट्यून इन किता है तो 102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा है मिड डे मेलोडीज ते मैं हाजी तुहाडी अपनी साक्षी तुहाडे नाल ते बहुत सारे गीत जिहड़े हुंदे ने ना मतलब जदों असीं उन्हां नूं सुनदे आ ते ओह जिहड़ा समा हुंदा है ओह जिहड़ा वक्त हुंदा है असीं दोबारा सारा रिकॉल करते हाँ ते अगला गीत भी कुछ इदां दा ही है जो साडे सारिआं दे दिल दे बहुत ही करीब है गाना हैगा मन की आंखें जो कि रिलीज़ हुई सी 1970 दे विच आ रही है जी थोड़े रेडियो सेट पे

वंस अगेन वेलकम बैक है जी ट्यून इन किया है तुसी 102.7 एफएम रेनबो ते मैं हाँ जी तुहाडी अपनी साक्षी तुहाडे नाल प्रोग्राम चल रहा है मिड डे मेलोडीज बिल्कुल दिल दे विच अगर दर्द होवे ना तो अखां तो बयान हो ही जाता है। कहते हैं तेरी आंखों में छिपे हैं राज कई, हर झलक में एक दुनिया नई, जो एक बार देख ले इनको वो फिर किसी और को ना देखे भाई।

ओमान विच 6,000 तो वध भारती उद्यम काम कर रहे ने। श्री गोयल ने भी कहा कि व्यापक आर्थिक भाईवाली समझौते तहत ओमान 98% टैरिफ ते फॉरन 100% ड्यूटी मुक्त बाजार पहुंच हासिल हो गई है। इस समझौते तो पहला भारत दियां बरामदां दा सिर्फ 15.3% ही ओमान ड्यूटी मुक्त पहुंच सकता सी। देश भर में होटलों रेस्टोरेंटा ते होर कारोबारा वालों वरते जाने वाले 19 किलोग्राम व्यापारक LPG सिलेंडर दीयां कीमतों में वाधा किया गया है। हालांकि घरेलू वरतों में आने वाली घरेलू रसोई गैस दीयां कीमतों में कोई बदलाव नहीं होया है। दिल्ली में व्यापारक LPG सिलेंडर की कीमत 42 रुपये वधा दी गई है ते हुण इसकी कीमत 3,113.50 रुपये होगी। मुंबई में इसकी कीमत 43.5 रुपये वधा दी गई है ते हुण व्यापारक सिलेंडर की कीमत 3,067.50 रुपये होगी। कोलकाता में व्यापारक सिलेंडर की कीमत 53.5 रुपये के वाधे नाल 3,255.50 रुपये होगी। चेन्नई में व्यापारक सिलेंडर कीमतों में 42 रुपये का वादा किया गया तो हूँ इसकी कीमत 3,283 रुपये होगी। व्यापारक LPG दीमतों में ताज़ा वाधा अमरीका ईरान विचकार टकराव दरमियान पश्चिमी एशिया में तनाव वधन करके ऊर्जा दिया आलमी लागतों में वाधे के पिछोकड़ होया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रुड़की ने JEE एडवांस प्रीख्या के नतीजे ऐलान दिए ने। कुल 56,880 उम्मीदवार ने प्रीख्या पास की जिन्हों 10,107 विद्यार्थना शामिल ने। फुटबॉल विच भारत औरतों की सैफ चैंपियनशिप 2026 के सैमीफाइनल विच पहुंच गया है। भारतीय टीम ने कल गोवा के मारकाओ के पंडित जवाहर लाल नहरू स्टेडियम विच मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश नूं 3-0 नाल हरा के चैंपियनशिप के ग्रुप बी विच सिखर ते थां बना ली। प्यारी जाक्षा लिंडाकॉम ते मालविका पी ने 1-1 गोल किया। भारत हुण बुधवार नूं सैमीफाइनल विच ग्रुप ए दे रनरअप भूटान खिलाफ मैदान च उतरेगा। दूजे पासे बांग्लादेश दूजे सैमीफाइनल विच ग्रुप ए दे जेतू नेपाल खिलाफ खेडेगा। आखिर च खास खबरां एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन लाओलाइन दरमियान नवी दिल्ली में दवली गलबात। 10 राज्यों तो राज्यसभा दी 24 सीटों लिए 2 सालों होने वाली चोणों वास्ते नोटिफिकेशन अज जारी कर दिता गया है। पश्चिम बंगाल कैबिनेट का पसार 35 नवे मंत्रियों ने सौ चुकी। सुप्रीम कोर्ट में 5 नवे जजा की नियुक्ति चीफ जस्टिस समेत जजा की कुल गिणती 37 हुई। भारत ओमान व्यापक आर्थिक भाईवाली समझौता अज तो लागू। इस नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म होंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6:20 ते होएगा। नमस्कार।

हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो दोस्तों, माइक चेक माइक चेक। वेल, मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश बहुत जल्दी वापस आ चुका है। होप तुसी थोड़े दिल च मुस्कान आ चुकी होगी। वेल वेल वेल, मैं हाँ थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश, जो थोड़े दिलों दियां गल्लां नूं जणा अज आवाज़

आया आवाज़ मतलब कि आज ही चिड़िए दोपहर होवेगी ना, कुछ खास, कुछ मीठियां यादां, कुछ अधूरियां ख्वाहिशां ते बेअंत जज्बातां नाल भरी हुई। क्योंकि कहिंदे ना जदों दिल शायर बन जावे ना तां हर लफ्ज़ विच ना एक कहानी हुंदी है, हर खामोशी विच एक अहसास हुंदा है। चलो शुरू करिए एक कहानी, यानी कि जिही शायरी नाल कि दिल दे कागज़ उत्ते लिखे ने अहसास कई, कुछ पढ़ लैंदे जहान, कुछ रह जांदे ने गुप्त ही, मुस्काना दे पिछे ही दर्द वसदा है, यह दिल ही जानता है किन्ना कुछ सहिंदा है। दोस्तों अज दे जिहड़े शो विच ना असीं गल करांगे, बहुत सारियां जिहड़े टॉपिक्स होंदे तां प्यार दी होगी, प्यार मुहब्बत, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन ते उन्हां यादां दी जो कदे पुरानियां नहीं होंदियां। तुसीं भी साडे नाल अपनियां फीलिंग्स सांझियां कर सकदे हो, कोई शायरी, कोई गीत जां कोई कहानी जो तुहाडे दिल विच करीब, जो तुहाडे दिल दे करीब होवे। दोस्तो एक और छोटी जी गल है कि दोस्तों कि कुछ रिश्ते लफ्ज़ां नाल नहीं एहसासां नाल बणदे ने, जिहड़े दिल विच वस जाण ओह कदे नहीं मुकदे ने। तो तैयार हो इस सोहने सफर लई जिथे हर सुर हर शब्द ते तुहाडे दिल नूं छूएगा। रेडियो की आवाज़ नूं थोड़ा जिहा कहिंदे हुण वधा लो ते अपना अपने ना जज्बातों नूं खुल के जी लो, क्योंकि यह है दिल आज शायर, जिथे दिल बोलता है ते दुनिया सुनती है, ते दुनिया थानू दुनिया तुहाडी शायरी तां सुनूगी अगर जेकर तुसी इस नंबर ते व्हाट्सएप अपनी शायरी करोगे। नंबर है जी 9855101027, यानी कि 9855101027। ते तुसी व्हाट्सएप मैसेजेस भेजो ते मैं थोड़ा अर्ज दोस्त रमनीश इंतजार कर रहा, थोड़े मैसेजेस दी उड़ीक कर रहा। ते कहिंदे ना बस 2 बजे है ना, बस अपने ना जोश साडा बुलंद हो गया, भावें जिहड़ा शो आ साडा सुकून वाला, पर हाँ जिहड़ा तुहाडी शायरी पढ़न लई जिहड़ी मैं वेट जरूर करांगा। ते उस तों पहलां एक सोहणी जी आवाज़ हरिहरन श्रेया घोषाल दी जी कि सुबह की धूप सी, एक पेशकारी तुहाडे सामने पेश है।

दोस्तों तो सुन रहे हो एफएम बैंड 102 इशारा 7 मेगाहर्ट्ज़ से, आकाशवाणी जलंधर दा है रेनबो चैनल है। वेल तुसे सुन रहे हो प्रोग्राम दिला शायर है। बहुत सारे सरोते ने सानू मैसेजेस भेजे ने। पहले सरोते साडे लोहा बाजार मलेरकोटला राकेश कुमार जी लिख रहे ने कि लोग मिल जाते ने कहानी बन के, दिल विच वस जाते ने निशानी बन के, जिन्हां नू असी रखना चाहते हाँ अपनियां अखां ते क्यों निकल जाते ने वह पानी बन के। बहुत बहुत सोने राकेश कुमार जी, बहुत सोना, बहुत ही वधिया जी। उतो साडे नवे सरोते लिख रहे ना राम स्वरूप अरोड़ा चौंक जिले सुल्तानपुर लोधी तो लिख रहे ने। इन्होंने भेजा है कि वसीम बरेलवी की एक लाइन्स भेजियाँ कुछ लिख रहे ने कि हादसों की जद पे है तो मुस्कुराना छोड़ दे, जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें, तुमने मेरे घर ना आने की कसम खाई तो है, तुमने मेरे घर ना आने की कसम खाई तो है, आंसुओं से भी कहो आंखों में आना छोड़ दे, प्यार के दुश्मन कभी तो प्यार से कह के तो देख, प्यार के दुश्मन कभी तो प्यार से कह के तो देख, एक तेरा दर ही क्या हम तो जमाना छोड़ दें। क्या बात है जी, बहुत सोना राम स्वरूप जी। उतो बाद साले साढ़े है गए गली अफीम वाली प्रेम मार्केट बठिंडा अमरजीत जस्सल चूची जी ने एक कुछ लाइन्स की फोटो भेजी है। लिख रहे ने कि

लिबास देखकर हमें गरीब ना समझे, हमारा गम भी तेरी जायदाद से ज्यादा है। क्या बात है जी, बहुत ही सोनी। अज साढ़े सुरोते ना जो फॉर्म चा, अज ना चुन के, अज ना सारिया ने सानू चीज़ा भेजिया ने, चुन के कहना मतलब पता भी लग रहा है, तो बहुत ही सोनी दोस्तों। उस तो बाद साढ़े दोस्त ने सत श्रीकाल दिल शायर विच रमनीश सर जी, हाँ रमनीश जी ठीक है जी, अगे हमेशा रमनीश लिख दिया, रमनीश लिखा जी। बलविंदर सरा पिंड मोरजंड सिखा हनुमानगढ़ तो लिख रहे हैं कि ऐसे तो हर कोई प्यार प्यार करता रहता है, ऐसे तो हर कोई प्यार प्यार करता रहता है, मगर मगर एक सच्चे प्यार की कीमत वही जानता है जिसने प्यार तो किया है मगर उसे उसका प्यार मिला ही नहीं। क्या बात है दोस्तों, बलविंदर जी कमाली गारती, बहुत ही सोना। दोस्तों प्रोग्राम चल रहा दिलास शायर है, तो शायरी विच अगर किसी आप पोइट की गल ना करिए, यानी कि एक बहुत ही बेहतरीन

तेरी हर चाप से, यानी हवा के झोंके से कोई पत्ता हिला या पर्दा हिल गया, आहट आहट को चाप कहते हैं, कि तेरी हर चाप से जलते हैं ख्यालों में चिरागीनी खुशी कि शायद महबूब आ गया वो।

दोस्तों, तो इस सुन रहे हो प्रोग्राम दिला शायर है, तो मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश। साढ़े स्रोत्या ने बहुत सोना मैसेज भेजा है लिख रहे ने कि तजुर्बों ने यही सिखाया है, पेड़ अपना है फल पराया है। तजुर्बों ने यही सिखाया है कि पेड़ अपना है फल पराया है। उसने बस ठोकरें हटाई हैं, पत्थरों को कहाँ हटाया है। आज वो फायदे में है जिसने वक्त से फायदा उठाया है। कोई आंसू ही उसे हंसाएगा, कोई आंसू ही उसे हंसाएगा, कहे कहो ने जिसे रुलाया है। खाकसार उदय चंद्र साढ़े सरोतिया ने लिख के भेजे। उस तो बाद एक इन्होंने फोटो भेजी है जो कि 18 मई 1995 की लिखत है। एक उत लिखे है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साए रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साए रहने दो, न जाने किस गली में, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ये जो लिखा है ये है बशीर बंद्र योना जी दी लिखत है। साढ़े स्रोतिया का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इन्नी वैल तो उन्होंने एक पुरानी जी इन्नी फोटो जी सामभी हुई सी। आई होप कि वो बहुत बहुत कुछ लिखते हो, बहुत सारिया उन्होंने पोइट्रियाँ सोर भी हो गई। दोस्तों, साढ़े प्यारे सरोतिया एक दरख्वास्त है कि जेकर तुसी कोई फोटो भी भेज दौ दैन उ राइटर का जोड़ा नेम आ जरूर मैनशन करो, क्योंकि सिर्फ पढ़न नाल तो चलो ठीक है, बहुत अच्छा लिखा होंगे, पर अगर वह राइटर भी मैनशन हो जाए ना तो होर वधिया होंगे। जिवें कि एक होर एक ना पोइट की याद आ रही है, एक शायर की याद आ रही है जिन्हों का नाम सी वारिस शाह। उन्होंने लिखा सी कि इश्क ना पुछे जात कुजाती, इश्क ना जात कुजाती होए, जोड़े इन्हां नूं रब ने जोड़े, तोड़े तोड़े ना तोड़े कोई। क्या वारिस शाह जिहड़े हीर रांझा दे लेखक ने, वो कहिंदे ने कि सच्चा प्यार ना जात पात नहीं देखता, जिहड़े जिहड़े दिल रब ने जोड़ दिते ना उन्हां नूं दुनिया की कोई ताकत वख नहीं कर सकती। दोस्तों, उन्हां दी शायरी ना सानू सिखाउंदी है कि मुहब्बत ना सब तो उपर है। हीर रांझे की कहानी अज भी लोगों के दिलों च ना जिंदा है, क्योंकि उसके सच्चे इश्क का दर्द छुपया होया है। दोस्तों, क्योंकि उहदे विच सच्चे इश्क का दर्द भी लिखा होया है। दोस्तों प्रोग्राम चल रहा दिला शायर है, तो साडे स्रोते ने एक माँ ते लिख के भेजा सीगा, तो पढ़ते हैं कि माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता, ये वो रिश्ता है जो कभी अनमोल नहीं होता। हम लाख दौलत कमा लें इस दुनिया में, पर माँ के प्यार का कोई तोल नहीं होता। जब जब थक कर हम हार मान जाते हैं, माँ का आंचल ही हमें फिर से जीना सिखाता है। दुनिया की हर खुशी एक तरफ और माँ की एक मुस्कान एक तरफ। सच कहूँ तो माँ के बिना ये जिंदगी अधूरी सी लगती है, और माँ के साथ हर कमी भी पूरी लगती है। वाह, क्या बात है दोस्तों। माँ ते एक बहुत सोहना लिखा साढ़े सरोतिया ने। आई होप जिहड़े साढ़े सरोते ने सोनू मलेरकोटला जी उन्होंने भेजी, अगली बार राइटर जरूर मैनशन करेंगे। सो दोस्तों, सुन रहे हो तुम प्रोग्राम दलाश शायर है, तो माँ की गल चल रही थी। दोस्तों, प्यारा जो सोंग सतिंदर सरताज जी की आवाज़ ना अम्मी

0: एक जमाने विच हुकम सिंह नू उस दे घर वाले कुड़कुड़ दास बुलांदे सन क्योंकि लाइट पखे चलदे देखदे ही ओ सारे ते चिकन लगदे सन।
1: ओ रामू ए पखा क्यों चलदा छड़ता, बिजली दा बिल की तेरा बापू भरेगा।
0: पर अज सारे उन्हां नू प्यारा सिंह कहंदे ने क्योंकि जदों तों उन्होंने सोलर पैनल लगाया है उदों तों मीटर दी सुई भी शांति नाल सौंदी है। अते हुकम सिंह भी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in ते।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों तुसीं सुन रहे प्रोग्राम दिल आज शायर है ते मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश। साढ़े स्रोते ने मैसेज भेजा, सब तो पहला प्रोग्राम पेश करता समुचे स्टाफ ते सुन रहे सारे स्रोतों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल बसंत सिंह टेलर बेटा लवदीप सिंह जस्सल। ठीक है जी बसंत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है साडा इस शो दे विच। लिख रहे ने कि जिवें खाली बोतल विच पी भरी हवा हुंदी है, किसे नूं इग्नोर करना भी पी एक सज़ा हुंदी है। अच्छा पी नूं वी लै, अच्छा जिवें खाली बोतल विच भी भरी हवा हुंदी है, किसे नूं इग्नोर करना भी एक सज़ा हुंदी है। उंज ही होई बेवफा नहीं हुंदा, उंज ही कोई बेवफा नहीं हुंदा है, कोई ना कोई वजह हुंदी है। जस्सल वक्त नाल भर जांदा है हर जख्म, जस्सल हर वक्त नाल भर जांदा है हर जख्म। वक्त ही हर मर्ज की दवा हुंदी है, वक्त ही हर मर्ज की दवा हुंदी है। क्या बात है दोस्तों, बहुत सोहना लिखा बसंत सिंह टेलर जी। दोस्तों जिवें कि साडा प्रोग्राम है दिल आज शायर है, आपां पोइट्री गज़ल दी गल कर रहे हैं, पर उहदे बारे असीं जाणदे हां कि गज़ल असल च हुंदी की है। दोस्तों उहदा कहिंदे आ कि गज़ल ना उर्दू अते फारसी साहित्य दी एक बहुत ही मशहूर अते रूहानी कावी विधा है। गज़ल शब्द दा जिहड़ा मतलब हुंदा है ना, औरतां नाल गल करना जां प्यार दीआं गल्लां करना हुंदा है, पर समें दे नाल ना इस दा दायरा बहुत वड्डा हो गया। दोस्तों अज गज़ल प्यार दर्द विरह इश्क रब समाज अते जिंदगी दे हर पहलू बारे बोलती है। गज़ल दी जिहड़ी बणतर है ना, आपां शेर मतला मकता काफिया दे रदीफ। शेर जिवें कि गज़ल कई दो लाइना टुकड़िया नाल बणदी है जिन्हां नूं शेर कहिंदे आपां। हर शेर अपने आप च ना पूरा अर्थ रखदा है जिहड़ी मतला

मेरे मेज पे बैठे बैठे सिगरेट की डिबिया पर तुमने छोटे से एक पौधे का एक स्केच बनाया था। आकर देखो, उस पौधे पर फूल आया है।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: नमस्कार, रेडियो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अभिनंदन स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का। नमस्कार श्रोताओं, आज है 1 जून और 1 जून को प्रतिवर्ष ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि माता पिता हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। ये हमारे पहले शिक्षक और मार्गदर्शक होते हैं। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए, उनका क्या योगदान होता है हमारे जीवन में और उनका महत्व हमारे जीवन में कितना है। ये तो सब हम मानते हैं, हमारे सब श्रोता जानते हैं कि माता पिता हमारे पहले शिक्षक होते हैं, हमें जीना सिखाते हैं और उनकी भूमिका हमारी ज़िंदगी में ताउम्र हमारे साथ रहती है। लेकिन क्या सच में ये भूमिका निभाते निभाते कुछ बातों का ध्यान रखना हम भूल जाते हैं? क्या ज़रूरी होता है कि माता पिता को भी बताया जाए कि उन्हें कैसे समझना है, कैसे सिखाना है, कैसे बच्चों को बड़ा करना है? ये कुछ बातें हैं जो हम उतना बात तो नहीं करते हैं रेडियो डॉक्टर में, लेकिन हमने सोचा इसको बात करना बेहद ज़रूरी है। और आज क्योंकि ये दिन है तो क्यों ना इस बात से आज हम शुरुआत करें इस महीने की, जो कि है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स यानी 1 जून। और इस विशेष महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सबकी भागीदारी भी हर बार की तरह बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन कराती हूँ हमारे आज के रेडियो डॉक्टर्स से, हमारे आज के एक्सपर्ट्स से, जो नेविगेट करेंगे आज के इस पूरे कार्यक्रम में और आपको बताएंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ पेरेंट्स। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर सैयद हुबे अली, आप हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं यूनिसेफ इंडिया में।

0: बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आपका।
1: नमस्कार।
0: और हमारी दूसरी गेस्ट हैं अलका मल्होत्रा जी, आप सोशल एंड बिहेवियर चेंज स्पेशलिस्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए आप दोनों यहाँ आए हैं। नमस्कार अलका जी।
2: नमस्कार, नमस्कार टू एवरीबॉडी।
0: और जैसा ये विशेष कार्यक्रम मैंने आपको बताया, आज इस दिवस पर हम कर रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, सीधे सवाल कर सकते हैं, हमारे आज के गेस्ट से पूछ सकते हैं, क्या बताना है, क्या पूछना है आपको इस विषय के बारे में, ये आप हमें डायल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स वही हैं, मैं रिपीट कर देती हूँ, 01123421080 2342 1082। और व्हाट्सएप पर मैसेज लिखकर आप कुछ पूछना चाहें तो आप लिख सकते हैं 9868107070 पर। हमें इंतज़ार है आपके प्रश्नों का। और हम स्वागत तो कर चुके हैं अपने स्पेशलिस्ट का। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर अली, क्या होता है उद्देश्य ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाने का, व्हाट इज़ दिस कॉन्सेप्ट?
1: ये जो यूनाइटेड नेशंस है ये ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मना रहा है, क्योंकि अभी बहुत कुछ देखा गया है कि जब पेरेंट्स और बच्चों का जो कनेक्ट होना चाहिए वो कनेक्ट कहीं ना कहीं हमारा ख़त्म होता जा रहा है। लोग अपने काम में इतने व्यस्त हो गए हैं और मोबाइल और टेक्नोलॉजी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि जो बच्चों का पेरेंट्स का आपस में जो कनेक्ट होना है वो कहीं ना कहीं ये कनेक्ट कम हो रहा है। इसी कनेक्ट को वापस जोड़ने के लिए ये ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जा रहा है, ताकि माँ बाप बच्चों के साथ किस तरह से अपने घर में जुड़ सकें।
0: जी, आपने कहा कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, और कनेक्ट होने के लिए कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं अलका जी, आप ये बताइए कि ये कनेक्ट कम क्यों हो रहा है एंड हाउ इज़ कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट? कम्युनिकेशन क्या जीवन में रोल प्ले करता है?
2: जब से बच्चा पैदा होता है तभी से बच्चा माता और पिता के साथ एक लगाव शुरू करता है, और सबसे ज़्यादा सोशलाइजेशन बच्चे की घर में शुरू होती है माता पिता के साथ। तो इसीलिए माता पिता का कनेक्ट बच्चे के साथ होना बहुत ज़रूरी है। बच्चा स्कूल, दादी दादू, सबको, नाना नानी, सबको बाद में मिलता है, सबसे पहले माता और पिता के साथ जुड़ता है। तो इसीलिए माता पिता के साथ का लगाव बहुत ज़रूरी है, और वो लगाव बचपन से शुरू होकर एडोलेसेंस में जब बच्चे अपने करियर चूज़ करते हैं, कैसे अपने माता पिता से डायरेक्शन ले सकते हैं, करियर में क्या उनको जानकारी होनी चाहिए, वो सब भी गेटवे जो है वो माता पिता के द्वारा होता है। टीचर से सीखते हैं, पर घर में क्या परिस्थिति है, घर में क्या करना चाहिए, वो माता पिता के साथ का कनेक्ट है। इसीलिए माता पिता का बच्चे के साथ नर्चरिंग, शुरू में लगाव, स्टिमुलेशन से लेकर जबकि ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है, अंत में जब बच्चा घर छोड़ के नौकरी करने लगते हैं, अपना परिवार बनाने लगते हैं, तब तक माता पिता का जुड़ाव और कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी हो
0: जी। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, कनेक्ट बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल हम ये भी सुनते हैं कि जब बच्चे एडोलेसेंट में आते हैं, छोटे बच्चे तो फिर भी हम देखते हैं कि माँ बाप से हर चीज़ पूछ लेते हैं, उनसे सलाह भी लेते हैं स्कूल जाते वक्त, बच्चे पढ़ाने लिखाने में भी, बच्चों के जब एग्ज़ाम होते हैं माँ बाप उसमें पूरी तरह से दखल रखते हैं। लेकिन जैसे बच्चा एडोलेसेंट एज में आता है तो हम अक्सर माँ बाप को कहते सुनते हैं कि अब तो बच्चा सुनता ही नहीं है, अब तो हमारी चलती ही नहीं है, अब तो हमें डरना पड़ता है बच्चों से। तो ये जो डिफरेंस आता है, ये एडोलेसेंट एज में जब आता है, इसको कैसे डील किया जाए, ये इतना इम्पोर्टेंट है?
2: सबसे ज़्यादा ज़रूरी है माता पिता का बच्चे के साथ जुड़ना, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन जो हम कहते हैं। बेसिकली क्या है कि बचपन से एडोलेसेंट्स में जाते हुए और ज़्यादा इंटेंस चेंजेस होने लग पड़ते हैं बच्चों में, वो अपने आप को समझना शुरू करते हैं, वो एक इंडिपेंडेंस की सोच रखने लग पड़ते हैं, उन्हें लगता है कि अब हाइट तो मेरी बढ़ गई है, अब मेरा ओपिनियन भी बढ़ना चाहिए, तो उनको ज़्यादा जानकारी मिलती है स्कूल से। तो माता पिता का रोल उसमें शुरुआत से ही है लिसनिंग का, सबसे पहले सुने अपने बच्चों को, उनको समझने की कोशिश करें कि वो ऐसा जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो उनकी, उनको जज नहीं करना है, उन्हें अपने बच्चों से डरना भी नहीं है, उन्हें बच्चे को साथ लेकर चलना है, सुनना है, समझना है, उससे बातचीत करनी है। अगर बातचीत करते रहेंगे अपने बच्चों के साथ तो जुड़ाव रहेगा, और ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी बातें निकल कर आएंगी जहाँ पर वो अपना सुझाव भी दे सकते हैं और बच्चे की सोच को समझकर उसे बदल भी सकते हैं। ये टू वे कम्युनिकेशन है, ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। वो ज़माना गया जब हम लोग छोटे थे और हम अपने माता पिता की बात, क्योंकि वो पिता कह रहे थे तो उस बात को समझ लिया। अब बच्चों को जानकारी है, मोबाइल है, स्कूल है, उनके दोस्त हैं, उनको बहुत सारी जानकारी मिल रही है, कभी कभी किसी किसी विषय में उनकी जानकारी

0: माता पिता की जानकारी से भी ज्यादा होती है। तो उस किस्से में, उस सिचुएशन में बच्चे की बात सुनना, उसे समझना और अपनी समझ से उसे बातचीत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रिस्पेक्टफुली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बात बनेगी तो बात बढ़ेगी ना,
1: बात
0: तो
1: से बात बनेगी,
0: बिल्कुल बात बनेगी।
1: और ये बिल्कुल आपने सही बात बोली कि पहले से हम कंपेयर करते हैं कई बार कि हम जब छोटे थे तो हम तो ऐसे नहीं करते थे, हमें जो कहा जाता था हम सुन लेते थे, लेकिन इसको जज नहीं करना है, जैसा आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बोली। और जैसे समय बदलता है उसी हिसाब से हमें भी अपने आप को चेंज करना है। बच्चों का एक दूसरी जनरेशन जब होती है तो उसका एक अलग माइंडसेट होता है और अलग उनका एक सारी दुनिया से कनेक्ट होना है। जैसे आजकल डिजिटल एज है तो बहुत सारी चीज़ें आ भी गई हैं, तो इस बारे में हम और बात करेंगे। लेकिन अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़कर कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 2342-1080, 2342-1082 पर। व्हाट्सएप के लिए नंबर है 9868107070। आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर और आज हम बात कर रहे हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स पर। आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: आपको सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। मैं हूं आपके साथ शालिनी मित्तल और आज बात कर रहे हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स पर। और आज हमारे साथ हमारे दो विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर सैयद अली और अलका मल्होत्रा जी। और हम बात कर रहे थे पेरेंट्स की आवश्यकता क्या होती है बच्चों के लिए, उनकी क्या महत्ता होती है, इस पर तो कोई वाद विवाद है ही नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं एक दूसरे के लिए वो लाइफ्स में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मिसकम्युनिकेशन, जैसा आपने बताया कि सही कम्युनिकेशन या कनेक्ट ना हो तो भी प्रॉब्लम्स बहुत विकराल रूप ले सकती हैं। और भारत की अगर हम बात करते हैं तो पेरेंटिंग में अक्सर महिलाओं को ही ज़्यादा फोकस में रखा जाता है और पुरुषों से उतनी ना तो उम्मीद की जाती है ना उनको पेरेंटिंग में उतना शामिल किया जाता है। तो अगर हम पुरुषों के रोल पर बात करें, फादर के रोल पर बात करें, तो अलका मैम आप क्या कहेंगी, क्या रोल होना चाहिए आपके हिसाब से फादर का?
1: पेरेंटिंग जो है ना, ये एक जैसे शादी 50-50 का रोल होता है ना, वैसे पेरेंटिंग भी 50-50 का रोल होता है। बहुत सारे स्टडीज़ की गई हैं और बार बार निकल के आता है कि माता से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है, माता उसे समझाएगी, बचपन से माता केयर का रोल करेगी, माता स्टिमुलेशन करेगी, माता खाना खिलाएगी, जबकि ये सारी चीज़ें पिता कर सकते हैं। और पिता जब करते हैं तो उनकी बॉन्डिंग अपने बच्चे के साथ बढ़ती है। तो चाहे वो स्टिमुलेशन है, कितने पिता हैं जो अपने बच्चे को उठाते हैं, गोद लगाते हैं, गले लगाते हैं, हग करते हैं, कडल करते हैं, ये सब चीज़ें जो फिजिकल कांटेक्ट होता है ना पिता और माता के साथ, उसके साथ लगाव बढ़ता है। तो पिता के साथ अगर पिता यही रोल करेंगे तो उनके साथ भी लगाव जो है बच्चे का वो बढ़ेगा बचपन में। और जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, अभी के गाने में भी हमने सुना से पिता से मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, चॉकलेट
0: जी
1: जो कि बिल्कुल ठीक है, आप चॉकलेट एक्सपेक्ट करिए अपने पिता से, पर साथ साथ आप पिता से कहानी भी एक्सपेक्ट करिए, आप पिता से ये भी एक्सपेक्ट करिए कि वो आपको घूमने लेके जाएंगे। एक हमने स्टडी करी थी 3 प्रदेशों में और निकल के आया कि पिता जो है वो घर लौट के बच्चे को अपना मोबाइल फोन दे देते हैं। वो सोचते हैं कि हमने टॉय दे दिया, ये हो गई मेरी पेरेंटिंग का रोल। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चा मोबाइल फोन नहीं चाह रहा है, बच्चा माता पिता से बात करना चाह रहा है। तो बच्चे के साथ खेलिए, उसे बातें बताइए, उसको कहानियाँ सुनाइए, उसको उठाइए, उसको गोद में लीजिए। एडोलेसेंट्स में हम लोग देखते हैं नॉर्मली फादर जो है ना वो एब्सेंट और फन पेरेंट माना जाता है, चॉकलेट देने का पेरेंट, जबकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चे से बातचीत करना, लगाव बनाए रखना, उसे गोदी में बिठाना और उससे अपना प्यार बढ़ाना। तो चाहे वो खाना खिलाने का समय है या वो हग करने का समय है, सुलाने का समय है, पिता इक्वल रोल पे कर सकते हैं
0: जी। और जैसे आपने कहा, हमने और जिक्र किया कि कई बार अगर हम पुरानी कुछ पीढ़ियों पर नज़र डालें तो बहुत कैटेगोरिकली रोल डिस्ट्रीब्यूटेड था, जैसा कि अब वो लाइंस थिन हो रही हैं या ब्लर हो रही हैं या कहीं कहीं गायब भी हो रही हैं, क्योंकि अब इक्वली वुमेन भी वर्क कर रही है, घर से बाहर निकल रही है और उतना ही दिन या समय वो अपने कार्यस्थल पर भी रहती है। तो उसको पूरी तरह से बच्चे को देखना या उससे एक्सपेक्ट करना कि वो पूरी तरह से एक हाउसवाइफ की तरह देख पाए, वो भी उतना इजी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जब रोल या चेंजेस होते हैं समाज में तो उस तरह से एक माइंडसेट में भी रोल या डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्या कहेंगे डॉक्टर अली इस बारे में आप कि कैसे ये चेंजेस माइंडसेट्स में आने चाहिए?
2: हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि जो मैडम ने बताया 50-50 का जो रोल है, क्योंकि अभी जैसे महिलाएँ भी वर्क्स प्लेस पे बहुत टाइम गुजारती है, तो दोनों अगर इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जैसे गाने में सुना कि माँ लोरी सुनाएगी तो ये पिताजी भी लोरी सुना सकते हैं। एक मेरे को लगता है कि जो स्टीरियोटाइप बन चुका है कि अगर कोई फादर है बच्चे को देख रहा है तो बहुत चैंपियन है, वो स्टीरियोटाइप बदलना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी अकाउंटेबिलिटी है। तो

0: दोनों अगर मिलके करेंगे तो बच्चे का अपब्रिंगिंग भी होगा, और बहुत से जगह में बहुत से स्टडीज़ भी ये निकल के आ रहा है कि अगर दोनों माता और पिता दोनों बच्चे के अपब्रिंगिंग में इक्वल ये लगते हैं, तो बच्चे का मानसिक, फिजिकल और इमोशनल तीनों भी अपब्रिंगिंग अच्छे से होते हैं।
1: जी, और बिल्कुल सही कहा आपने कि हम सिर्फ यहाँ पर फिजिकल वेलबींग की बात नहीं कर रहे हैं, हम मेंटल, इमोशनल, सोशल, साइकोलॉजिकल पूरी तरह से एक पर्सनालिटी की अपब्रिंगिंग की बात कर रहे हैं कि वो बैलेंस्ड एक पर्सनालिटी बने। और यहाँ पर एक मैसेज हमारे पास आया है, लिखने वाले हैं नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार उत्तराखंड से लिख रहे हैं। डॉक्टर अली और डॉक्टर अलका जी, आपको और शालिनी मैम को ग्लोबल पेरेंट डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैम, वर्तमान में तीन जनरेशन मौजूद हैं, 1950s, 1990s और 2026। आज के समय में पेरेंट्स को शिक्षित और अनुशासित होना जरूरी है, क्योंकि बच्चों के लिए माँ बाप ही रोल मॉडल हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? और बिल्कुल यही मेरा अगला प्रश्न भी था अलका जी आपसे, कि कई बार होता है कि हम बच्चों को बताते हैं कि ऐसे करिए ऐसे करिए, लेकिन हम कई बार वो खुद फॉलो नहीं कर पाते, चाहे फोन से रिलेटेड बात हो कि हम मोबाइल पर हैं और हम बच्चों के कहेंगे कि मोबाइल मत देखो, ज़्यादा तुमको नुकसान करेगा, या फिर ईटिंग हैबिट्स हो, या फिर अपने हेल्थ या हाइजीन की बात हो, या स्लीप की बात हो। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि आप एक रोल मॉडल बने अपने बच्चों के लिए?
2: मेरे ख्याल से तो जिसे हम कहते हैं कॉन्शियस पेरेंटिंग, जब तक आप पेरेंट नहीं बनते हैं ना, तब तक आप कुछ भी कर सकते हैं, पर जैसे ही आप पेरेंट बन जाते हैं तो जो भी आप कर रहे हैं वो उसका ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ता है आपके बच्चे के ऊपर, बनिस्पत के जो आप बोल रहे हैं। तो अगर आप अपने आप को वॉच नहीं करेंगे, अगर आप सच नहीं बोलेंगे और आप कोई भी बात को टाल देंगे, तो बच्चा भी टालने की आदत फटाफट सीख लेते हैं। बच्चे फ़ोन तो एक बहुत ही इजी एग्जाम्पल है कि अगर आप बच्चे को कह रहे हैं कि देखिए तुम अपना समय फ़ोन के ऊपर आधा घंटा दीजिएगा, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं, और आप सारा टाइम फ़ोन पे लगी हुए हैं, तो ऑब्वियसली बच्चा समझ रहा है कि ये रूल इनके लिए नहीं अप्लाई करता, मेरे लिए करता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे में क्या डिफरेंस है जो कि इनमें नहीं है। तो धीरे धीरे करके जो भी आप अपने बच्चे को दिखाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, उसे खुद करके दिखाइए, तो उससे बच्चा सीखने लग पड़ता है। अब हम जेंडर सोशलाइजेशन की भी बात करते हैं कि महिला काम करने जाने लग पड़ी है, पुरुष किचन में जा सकते हैं, पुरुष खाना बना सकते हैं, पुरुष खाना परोस सकते हैं, केयर कर सकते हैं बच्चों की भी घर में और बड़े बूढ़ों की भी। यही चीज़ अगर वो अपने घर में देखेंगे कि मेरे पिता भी किचन के अंदर जाते हैं, मेरी माता लाइट बल्ब बदल लेती है, तो बच्चे समझ जाएंगे कि ये कोई जेंडर्ड रोल्स नहीं है कि ये पिता ही कर सकता है और ये माता नहीं कर सकती, और ये माता ही कर सकती है और पिता नहीं कर सकता। इसको हम कहते हैं रोल मॉडलिंग। तो जब आप पेरेंट बन जाते हैं तब ऑल द मोर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही नहीं है कि आप क्या बता रहे हैं, पर आप क्या दिखा रहे हैं अपने बच्चे को, और वही चीज़ बच्चे बार बार सीखते हैं। शाउटिंग इज़ अ वेरी क्लियर एग्जाम्पल। आप बच्चे को बोलिएगा कि आप ऊंची आवाज़ में बात मत करिए, और आप माता पिता एक दूसरे से ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, हर एक बात में डिसअग्री कर रहे हैं, हर एक बात में एक दूसरे को काट रहे हैं, तो बच्चा तो समझ गया ना उसी समय कि ये तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के
1: और माता पिता ये समझ रहे हैं कि बच्चे कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, तो बहुत छोटे हैं, लेकिन वो सब ऑब्जर्व करते हैं,
2: सब ऑब्जर्व कर ले।
1: जी, जब हम स्लीप की बात करें, हाइजीन की बात करें, अलका जी ने बताया किस तरह से हमें करके रोल मॉडल बन के दिखाना है। जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, कई बार हमने ऐसा भी देखा है कई घरों में कि बच्चों को बहुत ज़्यादा फोर्स या प्रेशराइज किया जाता है कि आप पढ़िए, आपको कुछ बनना है, या कुछ उनकी ऐसी पेरेंट्स की अपनी इच्छाएं हैं जो वो नहीं कर पाए या कुछ अचीव नहीं कर पाए, तो वो उनको प्रेशराइज करते हैं बच्चों को, और इससे कई बार बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। अगर अच्छा पेपर नहीं हुआ तो कई बार वो ऐसा स्टेप भी उठा लेते हैं कि अपने को नुकसान पहुँचाना, या सुसाइड तक बात कई बार पहुँच जाती है, मेंटल उनका ब्रेकडाउन भी हो जाता है। तो इस तरह से किस तरह से उनको हैंडल किया जाए इमोशनली कि मेंटल हेल्थ उनकी सही रहे, और अगर ऐसा कोई डील कर रहा है तो क्या सिम्टम्स उसमें देखने चाहिए कि उन्हें पता लगे कि मेरा बच्चा उस तरफ तो नहीं जा रहा है?
0: सबसे पहले प्रश्न बहुत अच्छा है। इसमें ये देखें कि हमने एक स्टडी की थी कि ड्राइवर्स क्या है, ये मेंटल हेल्थ के बच्चे जो शिकार हो रहे हैं, एनजाइटी है, डिप्रेशन है या सेल्फ हार्म है, तो उसके हमको तीन ड्राइवर्स मिले हैं। ग्लोबली भी ये स्टडी है, यूनिसेफ WHO की, और इंडिया में भी ये स्टडी है। एक तो जो घर में कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बच्चों के, खास तौर के

0: यूथ यंग एडल्ट्स के ऊपर जो मानसिक प्रेशर बढ़ रहा है, बच्चे इसे कोप नहीं कर पाते, इसलिए सेल्फ हार्म टेंडेंसीज या घर से बाहर रहना, दूर रहना, अकेले रहना ये शुरू कर देते हैं, ये एक हुआ। दूसरा, इस एज में पर्टिकुलरली यूथ्स और यंग एडोलेसेंट्स में लव अफेयर्स की वजह से भी काफ़ी बच्चे एनजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। और तीसरा जो आपने बताया प्रेशर, या तो एग्ज़ाम का प्रेशर है या जॉब लगने का प्रेशर है, ये तीन जो ड्राइवर्स है ये बच्चों के लिए मानसिक संतुलन को बिगाड़ने में बहुत काम कर रहा है। इसके नॉर्मल सिम्टम्स यही होते हैं कि बच्चा खाना अगर आपके साथ बैठा है तो आपके साथ बैठना नहीं चाहता, बात आँख मिला के करना नहीं चाहता, अकेले अकेले ज़्यादा रहना चाहता है बच्चा बच्ची जो भी हो, तो आइसोलेशन अपने आप को कर लेना ये फर्स्ट सिम्टम है। दूसरा, खुल के बात ना करना, हंस नहीं पाना और आँख में आँख डाल के बात नहीं कर पाना। और इसमें जो पेरेंट्स का जो मेन रोल है, थेरेपिस्ट तो जो करेगा सो करेगा, पेरेंट्स को चार चीज़ें, अगर आपका बच्चा इस किसी भी स्थिति से गुजर रहा है, सोशली अपने आप को एक्सक्लूड कर रहा है, तो चार चीज़ें करें। एक तो उसकी बात को आप समझे, पहले उससे बात करें, लिसन एंड डू नॉट एडवाइस। हम लोग बहुत जल्दी बच्चे को एडवाइस करना शुरू कर दें, तो बच्चे की बात को हम सुने एक। दूसरा, हम उसको ये बताएं, उसको रीअश्योर करें कि भाई मेरा आपको सपोर्ट होगा, जो भी परिस्थिति आप गुजर रहे हैं वी आर देयर टू हेल्प यू और हम आपको सपोर्ट करेंगे। तीसरा, अगर उसको कोई ख्यालात आ रहे हैं या उसको कभी कभी हेलुसिनेशन डेल्यूजन्स हो रहे हैं, तो उसको हम एक्सक्लूसिवली चैलेंज ना करें, भाई ऐसे कुछ नहीं होता है, एकदम से जो नहीं करके हम कहते हैं तो ये ना करें। और चौथी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है, बच्चे के साथ में मिलके उसके साथ सॉल्यूशन को ढूंढे, ना कि अपना सॉल्यूशन उसके ऊपर थोपे। तो अगर ये चार चीज़ें हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चों को हम इसमें से निकालने की कोशिश भी कर सकते हैं। या एक और होता है कि बच्चा अगर ऐसे कुछ कर रहा है तो उसका ये स्कूल में प्रॉब्लम है, स्कूल चेंज कर दिया, यहाँ पे है माँ के घर भेज या नानी के घर भेज दिया, शादी करके दे दो, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। उसको आप बात को समझिए, थेरेपिस्ट के पास ले जाइए। अभी तो बहुत से सिस्टम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर बहुत काम की है, टेलीमानस में आप बात कर सकते हैं 144-16 नंबर 14416 पे 24/7 कॉल करके अपना वार्तालाप कर किया जा सकता है, काउंसिलिंग की जा सकती है, मनोदर्पण के थ्रू इसे बात की जा सकती है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक से आप सब डिस्ट्रिक्ट में और सब डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और जो इसके नीचे CSC यहाँ पर भी है, यहाँ पर जो काउंसिलर है उनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है, तो वहाँ जाके भी आप वार्तालाप किए जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट अपने तरफ से कर रही है, प्रॉब्लम यह है कि हम बच्चे की भावना को समझें और उसको सही दिशा में ले जाएं।
1: जी, और बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें हमें इस कार्यक्रम में आज पता लग रही हैं। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन करिए 2342-1080, 2342-1082 पर, व्हाट्सएप के लिए 9868-107070 पर आप हमें लिख सकते हैं। हमें श्रोता लिख रहे हैं कि उन्हें कार्यक्रम पसंद आ रहा है, ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, विषय हमें पसंद आ रहा है और बहुत अच्छी जानकारी आपके विशेषज्ञों के माध्यम से मिल रही है। तौसीफ अहमद हमें लिख रहे हैं जम्मू कश्मीर श्रीनगर से कि इनकी एक बेटी है, अभी 2 साल की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन चाह रहे हैं कि किस तरह से उसको पाले पोसे, इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ मदद मिल सके।
0: 2 साल का बच्चा है, सबसे पहले तो बच्चे के जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपका हुआ होगा डिलीवरी, तो मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड करके आता है, उस कार्ड में लिखा होता है कि 2 साल के बच्चे के क्या माइलस्टोन्स रहने चाहिए। बच्चे को आप साथ में रखिए, बच्चे को आप खिलाने में आप माता और पिता दोनों भी भागीदारी करिए, बच्चे से बात करिए। हम लोगों को लगता है कि 2 साल का बच्चा क्या ही बात करें, मगर आप जितना उससे बात करेंगे उतना सोशल और इमोशनल कनेक्ट माता पिता के साथ बच्चे का बढ़ता है। तो जैसा जैसा बच्चा आपके साथ बड़ा हो रहा है, आप बच्चे को उसी तरह से साथ में बड़ा करिए, ना कि अभी बहुत से घरों में देखा जा रहा है कि माता पिता दोनों जॉब पे है तो नैनी के साथ ही बच्चा जो है बड़ा हो रहा है, तो वो कनेक्ट हमारा बच्चे के साथ रहा नहीं जाता है। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, आपका बच्चा वो छोटा है बच्ची, उसके साथ अगर आप ग्रो होंगे तो जो एडोलेसेंट अवस्था में आके अगर हम बच्चों को, फिर वहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं और बच्चों को बोलते हैं, तो बच्चों को भी लगता है कि अब इनको मेरी याद आ रही है और ये अब मेरे ऊपर जो है बॉसिंग कर रहे हैं कि आप ऐसा करिए, तो ये छोटे बच्चे के साथ जब आप खुद बड़े होंगे तो ये प्रॉब्लम्स आपके नहीं आएंगे।
1: साथ ही इन्होंने ये भी लिखा है कि बहुत कमज़ोर है इनकी बेटी, तो इसका मतलब फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा आपने बताया इमोशनल तो देना ही है, फिजिकल पर भी इन्हें ध्यान देना होगा। देवदत्त पारसोलिया जी हमें लिख रहे हैं कि इन्हें ये विषय बहुत पसंद आया है और एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तो आपको धन्यवाद, आप इस तरह से हमें मैसेज कर रहे हैं, हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स पर विशेष रेडियो डॉक्टर। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, एक गीत सुनकर वापस आएंगे। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, हमसे पूछते रहिए, हमारे एक्सपर्ट्स

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप हैं रेडियो डॉक्टर में, हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हेलो।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार।
2: नमस्कार शालिनी जी, मैं यशपाल बोल रहा हूँ दिल्ली से।
1: जी जी यशपाल जी, बताइए क्या पूछना है आपने। हाँ, विषय सुन लिया हमारा।
2: हाँ, टॉपिक अच्छा है, दोनों एक्सपर्ट को भी नमस्कार।
1: जी नमस्कार, बोल रहे हैं, आपको सुन रहे हैं हमारे स्पेशलिस्ट। हाँ, आज बताइए क्या पूछना चाहते हैं।
2: मेरा शालिनी जी, मेरा इशू है ना, वो हेल्थ से रिलेटेड है। अब जैसे आजकल के जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली मतलब जो 40 से जिनकी कम है, 40 से कम के, तो उनकी खुद की ये जो लाइफ स्टाइल है, मतलब ऐसे अनहेल्दी है, डिसिप्लिन नहीं है, दोनों वर्किंग भी हैं, तो उनको ज्यादा हेल्थ का इम्पोर्टेंस भी नहीं इतना, आई थिंक दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस इम्पोर्टेंस। तो वो इस वजह से या कुछ दूसरे मजबूरी से दे, मतलब वो बच्चों को भी उतना नहीं टेक केयर कर पाते।

0: हैं। तो सबसे मुझे ये फियर है, लगता है कि मतलब बच्चे भी जो आगे भविष्य में भी उनको हेल्थी हेल्थ वाइज उनका जो है ना इशू वो रहेगा, दे विल नॉट बी हेल्दी जनरेशन, बस एक मेरा इसी पॉइंट
1: जी
0: पे
1: जी
0: था।
1: बिल्कुल
0: थैंक यू।
1: सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं यशपाल जी, और इसीलिए ज़रूरत पड़ रही है हमें ये कार्यक्रम भी करने की, क्योंकि सीधे कहीं ना कहीं ये जो रोल है पेरेंट्स का, ये उनके स्वास्थ्य पर, हमारे आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा है, जैसा आप डर दिखा रहे
0: हाँ
1: हैं, ये डर हमारा भी है, और इसीलिए हम आज गेस्ट लेकर आए हैं, स्पेशलिस्ट लेकर आए हैं, कि वो बता रहे हैं कि सीधे सही अच्छी पेरेंटिंग क्या होनी चाहिए और हेल्थ पर कैसे ध्यान देना चाहिए। कुछ आप और कहना चाहेंगे या कुछ पूछना चाहेंगे?
0: हाँ नहीं, बस इनकी एडवाइस थोड़ा लेना चाह रहा था
1: जी
0: कि इसमें कैसा कुछ कम कुछ पॉसिबिलिटी है, मतलब ठीक होने का कुछ
1: जी जी
0: इनको ये।
1: मैं हमारे विशेषज्ञ
0: हाँ
1: से पूछ लेती हूँ, किस तरह से माइंडसेट चेंज किया जाए बच्चों का।
2: देखिए, हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सही समय पर जो भी भोजन कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सही समय पर खाएं। आप जब भी खाना खाते हैं तो अकेले अकेले ना खाएं, हम जब आप पेरेंट्स खा रहे हैं, बच्चों के साथ मिलके खाना खाएं, और खाने में जो जंक फूड है इसको हम लोग अवॉइड करें अगर हेल्दी रहना है। खाने के साथ साथ में फिज़िकल एक्टिविटी का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए। और जो कुछ हमारी बुरी आदतें हैं, जैसे फ्रूट्स खा रहे हैं साथ में चाय पी रहे हैं, तो फ्रूट्स के जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब ही नहीं होते हैं। तो आप खाने के 1 घंटा पहले और खाने के 1 घंटे बाद तक चाय कॉफ़ी जैसी चीज़ों को अवॉइड करें। तो अच्छी आदतें डालें, हम लोग खुद भी हेल्दी रहें, बच्चों को भी इस हेल्थ की आदत डालें, हेल्दी फूड की।
3: हेल्दी फूड और एक्सरसाइज, ये दोनों चीज़ें
1: जी
3: बहुत ज़रूरी हैं।
1: जी एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, और ये आजकल देखा जा रहा है कि जो सर्वेज हुए हैं कि बच्चे बाहर नहीं निकल रहे हैं, धूप में नहीं खेल रहे हैं, जैसा आपने एक्सरसाइज की बात की कि बैठे बैठे ही, क्योंकि आजकल गैजेट्स बहुत हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ़ोन पर या टीवी पर या मोबाइल पर वो मैक्सिमम समय अपना यूज़ कर रहे हैं, उसके कारण बहुत सारी फिजिकल भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको, जैसे नेक पेन, और ये इस पर हम कार्यक्रम करते रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? जो इस तरह की जब ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बच्चे रहते हैं और उनको समझ नहीं होती है उस एज में, कई बार बहुत यंग छोटे बच्चों को भी ये सारी सुविधाएं दे दी जाती है पेरेंट्स द्वारा, तो जब बहुत छोटे हैं उनको पता नहीं है किस तरह से साइबर फ्रॉड हो सकता है उनके साथ, तो ये सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, या ऑनलाइन सेफ्टी, और किस तरह से पेरेंट्स भी खुद समझें और बच्चों को समझाएं?
3: एक्चुअली सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऑनलाइन स्पेस में ये है कि आप खुद अपना बिहेवियर मॉडल करें। तो अगर आप ऑनलाइन स्पेस में कम रहेंगे तो फिर ही आप बच्चे को बोल सकते हैं कि आप भी ऑनलाइन कम रहिएगा फर्स्ट। तो
1: जी
3: अपने आप को मॉडल करिए कि आप अपना समय कितना बिता रही हैं फ़ोन पे, कितना समय पिताजी बिता रहे हैं फ़ोन पे, कितना वो स्क्रॉल कर रहे हैं ये सब रील्स को, और फिर आप बच्चे को कह सकते हैं कि चलिए आप दोनों, अब उसमें फिर कॉन्वर्सेशन बातचीत बहुत ज़रूरी हो जाती है कि बच्चे के साथ तय किया जाए कि आप फ़ोन पे कितना समय बिताएंगे। देखिए कुछ तो ऑनलाइन काम आजकल स्कूल्स से भी आने लग पड़ा है, तो इसीलिए अगर हमें उसको भी डिस्काउंट करना है तो दोनों को अग्री करना पड़ेगा कि आपके स्कूल के काम के लिए इतना समय, और आपकी अपनी एंटरटेनमेंट, आपके फ्रेंड्स को कैचअप या जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए इतना समय,
1: जी
3: वो आपको बच्चे के साथ तय करना पड़ेगा। यदि आप बच्चे के साथ तय करेंगे तो फिर उसको बच्चे के साथ ही ट्रैक करिए कि अगर हमने फैसला किया था दोनों ने मिलके कि आधा घंटे का समय हम लोग बिताएंगे, उसमें से 1 घंटा मान लीजिए आपको स्कूल के काम के लिए चाहिए, आधे घंटे का टाइम आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए बिता रहे हैं, तो आपने कब फ़ोन उठाया और आपने कब उस फोन को रखा, ये दोनों ट्रैक करेंगे, माता पिता और बच्चा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट बाउंड्रीज, दूसरा उसको ट्रैक करिए खुद दोनों मिलकर, और तीसरी चीज़ खुद आप भी समझिए कि ऑनलाइन प्रोटेक्शन आपको कैसे मिल सकती है। ये जानकारी चाहे आपको स्कूल की प्रिंसिपल से बात करके करनी पड़े या आपको स्कूल की टीचर से बात करके जानकारी लेनी पड़े और पेरेंट्स से जानकारी लेनी पड़े उनके बच्चे कितना समय बिताते हैं, तो हम लोगों को थोड़ा अपने आप को इस बारे में जागरूक रखना पड़ेगा कि बच्चे कितना समय मोबाइल फ़ोन पर और इंटरनेट पर, मोबाइल फ़ोन के इंटरनेट पर बिता रहे हैं, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चे को क्या क्या सेफ्टी मेजर्स आप कर सकती हैं, क्या कितना स्क्रीन टाइम, आजकल तो ऐप्स आपको बता देते हैं कितना स्क्रीन टाइम आपका बच्चा यूज़ कर रहा है, तो वो उन सब डायमेंशंस को खुद को पहले जानकार पढ़ना पड़ेगा, तो वो जानकारी आपको टीचर से, आपको प्रिंसिपल से, आपको अपने फ्रेंड से मिल सकती है। तो अपने आप को ऑनलाइन प्रोटेक्शन

0: बारे में जागरूक करिए, फिर अपने बच्चे के साथ तय करिए कि कितना समय के वो बताएंगे। और जो अभी डॉक्टर अली कह रहे थे, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे की ऑनलाइन सेफ्टी के ऊपर देखते रहिए कि उनको उस ऑनलाइन स्पेस से ज़्यादा मेंटल प्रेशर तो नहीं पड़ रहा है, वो आइसोलेटेड तो नहीं हो रहे हैं। यू हैव टू वॉच द चाइल्ड्स बिहेवियर, आपको खुद देखना पड़ेगा कि बच्चे की आई कांटेक्ट की बहुत अच्छी बात करी डॉक्टर अली ने। तो क्या आपका बच्चा आपसे बात करने में, ऑनलाइन स्पेस के बारे में बात करने में, क्या वो खुलकर बात कर पा रहे हैं, कि वो बच्चे कुछ आपको लग रहा है कि कुछ छुपा रहे हैं? तो ये आपको ओपननेस रखनी पड़ेगी, फिर ही आप खुद दोनों मिलकर एक ऑनलाइन सेफ स्पेस तय कर सकते
1: जी,
0: हैं।
1: इस बीच हमारे कुछ श्रोता हमारे साथ बात करना चाहते हैं, फोन लाइन पर वेट कर रहे हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्कार
1: जी।
2: शालिनी
1: जी
2: जी,
1: नमस्कार, कैसी हैं आप?
2: मैं विचित बेदी बोल रही
1: जी
2: हूँ।
1: जी स्वागत है
2: हाँ
1: कार्यक्रम
2: जी,
1: में। क्या
2: आप सबको
1: कहेंगी?
2: नमस्कार। डॉक्टर शालिनी जी, आजकल कुछ पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। जैसे मेरे पास ही स्कूल है, मेरी दीवार के साथ, वहाँ टीचर ये एडवाइज करती हैं कि अगर बच्चे का रॉन्ग है, उस पर अगर काटा लगा दिया तो पेरेंट्स शिकायत लेके आ जाते हैं। बच्चों को थोड़ी हमें ना सुनने की आदत होनी चाहिए। हम हर बात उनकी मान लेते हैं, तभी हम प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं।
1: जी, ये एक बात इनकी सोच है और कुछ हद तक सही भी है, ऐसा हमने भी देखा है। क्या कहेंगे डॉक्टर अली इस
2: सबसे
1: बारे में?
2: ज्यादा ऐसा है ना, हेलो, नहीं
1: जी
2: मैं बीच में सॉरी बात करती हूँ, ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं पेरेंट्स, जिससे कि बच्चे जो हैं वो इमोशनली बिल्कुल जीरो हो गए हैं।
3: ये जो मुद्दा है, बहुत से पेरेंट्स अभी ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। इसका एक तरीका ये है कि आप बच्चे को जिस भी स्पोर्ट्स में हो, ज़रूर ये कोशिश करें कि अपना बच्चा स्पोर्ट्स में रहे। स्पोर्ट्स में बच्चा रहेगा तो कभी जीतेगा कभी हारेगा, और इससे बच्चे को हार और उसके पेरेंट्स को हार में भी किस तरह से खुश रहना चाहिए, ये स्पोर्ट्स सिखाता है। तो जो ओवर प्रोटेक्शन का जो मसला आ रहा है, इसका एक बहुत अच्छा तरीका ये है, घर में बैठे हैं तो आप अंताक्षरी खेलिए, कुछ ना कुछ इस तरह से गेम्स करते रहिए जिसमें बच्चा हारना और जीतना, पेरेंट्स हारना और जीतना दोनों को फेस करे। तो आपस में फिर सीख जाते हैं कि किस तरह से, भाई गलती हो तो गलती को गलती मानो, तो उससे फिर ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन नहीं हो पाता है।
1: जी
2: सबसे बड़ी टीचर है, मुझे ऐसे लगता है कि कुछ साल मदर जो जॉब भी करती हैं, कुछ छुट्टी लेके बच्चों साथ इमोशनली जुड़े, उनको बचपन अपना सुनाए, उनकी बातें सुने, एक दूसरे के दिल में घुसे जैसे।
1: बिल्कुल यही बात अभी अलका जी कह रही थी कि कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, और जब कनेक्ट होगा, एक दूसरे की बात समझेंगे, तभी बात से बात निकलेगी, दूर तलक जाएगी, जो हम शुरू में भी बात कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद वेदी जी हमसे कनेक्ट करने के लिए। एक और हमारे श्रोता हमारे साथ हैं। हेलो
4: हेलो, नमस्कार
1: जी।
4: सालिनी मैम
1: नमस्कार जी,
4: और
1: बताएं।
4: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
3: नमस्कार,
4: मैं रघुवीर सिंह ठाकुर बोल रहा हूँ उत्तराखंड से।
1: जी बताएं, क्या पूछना है?
4: मुझे ये पूछना है कि जैसे बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास और उनको उनका कैसे हो। आजकल के बच्चे ये देखे जाते हैं कि वो कमजोर टाइप के हैं, जैसे हमारे बराबर वो उतना काम या कुछ कर नहीं सकते, और जैसे उनको कुछ चीज बताओ तो ऐसे मायूस से हो जाते हैं। तो ये बच्चों का विकास और शारीरिक विकास कैसे होगा? जी
3: बच्चों को अपने वार्तालाप के सेंटर में रखिए। मैं आपको एक बताता हूँ, बराक ओबामा को जब नोबल प्राइज़ मिला था तो उन्होंने फ़ोन करके अपनी बच्ची को, जो 11 साल की है और दूसरी बच्ची 8 साल की, उन्होंने कहा मुझे देखो गो नोबल पीस प्राइज़ मिला है। तो बच्ची ने कहा अरे आज आप भूल गए, आज बो का बर्थडे है, बो है उनका पोर्चुगीज़ कुत्ता, घर का फैमिली डॉग। दूसरी बेटी ने कहा अरे 3 दिन का वीकेंड की छुट्टी है, आप कैसे भूल गए हमारा। तो मतलब जो नोबल प्राइज़ है, आप हम जान रहे हैं उसकी क्या अहमियत है। मगर बच्चे को अगर सेंटर, बच्चे के लिए उसकी समस्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम अगर माता पिता बच्चे को सबसे ज़्यादा सेंटर पे रखे, भाई वो खा रहा है कि नहीं खा रहा है, वो खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, वो उसका मानसिक मतलब स्कोलेस्टिक स्कूल में परफॉर्मेंस, घर में परफॉर्मेंस, फिजिकल परफॉर्मेंस, अपने दोस्तों के साथ किस तरह से रह रहा है, अगर वो टच और कनेक्ट आप शुरू से रखेंगे, तो ये जो समस्या आ रही है कि बहुत बच्चा मेरा कमज़ोर हो गया मैं, तो ये बातें नहीं आएंगी, बहुत हद तक आप इसको ख़त्म कर सकते हैं।
1: जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैसेज हमारे पास बहुत सारे आ गए हैं। ये मैसेज हमें लिखा है नानी तरिंग जी ने अरुणाचल प्रदेश से, और उन्होंने लिखा है कि मेरे पिताजी अकेले पेरेंट हैं, बचपन से कभी माँ का प्यार नहीं मिला, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे कभी माँ के प्यार की कमी महसूस होने नहीं दी, बट लास्ट वीक पिताजी और मेरा झगड़ा हो गया, नाउ आई डोंट नो वॉट टू डू।

0: ये पूछ रहे हैं।
1: देखिए, आप पिताजी, आपने पहले ही बताया कि पिताजी ने मुझे जो है बचपन से ये किया है और आपकी अच्छी केमिस्ट्री है, तो आप वार्तालाप कीजिए। जैसे अलका जी ने बताया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द कम्युनिकेशन। डिसएग्रीमेंट तो हो सकता है, अभी तो आपकी शुरुआत डिसएग्रीमेंट की, आगे जाके और बहुत सी बातें होंगी जिसमें डिसएग्रीमेंट होगा, पर ये डिसएग्रीमेंट का हल जो है आपस में बात करने से ही सुलझा जा सकता है।
0: और
1: जी
0: इसमें पहले आपका तो सवाल ही नहीं उठता ना, आप फोन उठाइए, सीधा जाइए और पिताजी से बात करिए और अपने डिफरेंसेस को ख़त्म करिए। ज़रूर जब आप एक दूसरे से बात करना शुरू करेंगी तो कोई ना कोई हल निकल आएगा।
2: जी अगर और मुझे लगता है कि आप अभी देर ना करिए, जैसा अलका मैम कह रही हैं, जैसे अली सर कह रहे हैं, आप फौरन कॉल लगाइए अपने पिताजी को, उनसे बात कीजिए और जो भी आपकी मिसकम्युनिकेशन या जो भी गलत फहमियाँ हैं वो दूर करिए, और हमें मैसेज करके या मेल करके हमें ज़रूर बताइए कि आप कितने खुश हैं अब, क्योंकि आपको बहुत खुशी मिलेगी जब आप अपने पिताजी से बात कर पाएंगे और जो भी गलत फहमियाँ हैं वो दूर कर पाएंगे। आप हमें मेल कर सकते हैं healthaiadelhi@gmail.com पर, और अपने फीडबैक्स भी आप सभी हमें उस पर भेज सकते हैं। एक और हमारे साथ हमारे कॉलर हैं। हेलो
3: जी नमस्कार,
2: जी नमस्कार।
3: प्रीति गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
2: जी जी स्वागत है, बताएं।
3: हाँ, मेरा कहना है कि जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो एक शब्द आता है डिमेंशिया, जिसे हिंदी में बोलते हैं मति भ्रंश, बुद्धि भ्रष्ट होना। तो मेरा पूछना है कि वास्तव में इसमें क्या होता है, मतलब ब्रेन में कुछ कमी आ जाती है, और बच्चों में भी ये बीमारी होती है क्या, कृपया विस्तार से बताइए।
2: जी मैं पूछती हूँ, हमारे एक्सपर्ट सुन रहे हैं आपकी बात को। जी सर,
1: डिमेंशिया मतलब मेमोरी में स्लोली स्लोली कमी हो जाना। आमतौर पे ये बच्चों में नहीं होती है, आमतौर पे ये होती है 60-70 साल के बाद। स्लोली स्लोली जब एजिंग का शुरू होता है तब लोग अपनी अपनी मेमोरी खोलने लगते हैं। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक जो पुरानी मेमोरी है, जो पक्की मेमोरी होती है, बचपन की मेमोरी, वो इंसान बहुत जल्दी खोता नहीं है। बहुत जल्दी क्या होता है, जो रिसेंट पास की जो मेमोरीज है वो चली जाती है। पर अगर बच्चे में अगर इस तरह की कोई बात है कि वो भूल रहा है, तो उसको जो है स्वास्थ्य कर्मी को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज के साथ ये होता है, पर उसके अंदर जो है घर वालों को समझ के उसके साथ ये करना ज़रूरी है। पर अगर बच्चे में अगर किस तरह से अडल्ट है, यंग अडल्ट है, एडोलेसेंट है, या बच्चे में अगर डिमेंशिया का कोई प्रॉब्लम है, तो उसको दिखाना चाहिए।
2: जी धन्यवाद कॉल करने के लिए। और हमारे पास मैसेज, दो मैसेज मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो लगभग एक सी बात है, इसमें मैं दोनों को एक साथ लेना चाहूँगी। इन्होंने लिखा है, डॉक्टर साहब, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एब्सेंट फादर, अगर सिंगल मदर है उसका क्या इम्पैक्ट होता है बच्चे की पर्सनालिटी में। और दूसरा प्रश्न किया है अशोक जी ने दिल्ली से कि मेरा 8 साल का बच्चा है और वो मेरे साथ रहता है, वाइफ मेरी वर्किंग है, 600 किलोमीटर दूर रहती है, बच्चे के इमोशंस को कैसे पहचाने, क्या करें कि उनको मदर की एब्सेंस फील नहीं हो। तो कहीं भी जहाँ पर एक पेरेंट मिसिंग है तो कैसे डील किया जाए।
1: एक पेरेंट मिसिंग है तो कहीं ना कहीं तो इशू तो है, क्योंकि दोनों पेरेंट का बच्चे का बड़ा होना और एक पेरेंट में बच्चा बड़ा होना, ये दोनों में काफ़ी अंतर होगा। आप एज अ सिंगल पेरेंट, यही है कि हम बच्चे को अगर माता है तो माता पिता दोनों की तरह से प्यार दें, क्योंकि आप और अब आप काम कर भी रहे हो। जैसे बच्चे को आप नींद में से उठने से देखें, लास्ट में सोए तक खाना खिलाने का सारा कुछ काम आप कर रहे हो, तो आप बड़ा काम तो कर रहे हो। या तो आपका पेरेंट एब्सेंट है, या मतलब या तो डाइवर्स केस है, या फिर दूर है किसी काम की वजह से, तो आप वो अपना प्यार बच्चे को तो दे रहे हो। इसमें यह है कि जो इमोशनल कनेक्ट है, बहुत बार हम देखते हैं कि भाई सिंगल पेरेंट है, आप भी अपने काम में व्यस्त है, तो जो ज़रूरी है वो ज़रूरत वाला काम कर दिए, फिर उसके बाद अपने काम में लग गए। थोड़ा सा इमोशनल कनेक्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट इफ़ द सर्कमस्टेंसेस अगर ये मांगता है, तो आपको माता पिता दोनों बनना पड़ेगा अगर सिंगल भी है तो।
2: जैसा अभी उन्होंने भी लिखा था अरुणाचल प्रदेश से, उन्होंने कि उनके फादर ने भी उनको बचपन से अकेले पाला और कभी उनकी कमी महसूस होने नहीं दी मदर की। तो ऐसा नहीं है, पूरी तरह से एक डेवलप पर्सनैलिटी हो सकती है। अनिल कालरा जी, डॉक्टर अनिल कालरा हमें गुरुग्राम से सुन रहे हैं और लिख रहे हैं कि वेरी गुड प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। और ये हमें लिखकर भेजा है सरोज मल्होत्रा जी ने, साकेत मेरठ से, नमस्ते डॉक्टर साहब, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे दूसरे बच्चे से कंपैरिजन बहुत करते हैं और एजुकेशन का प्रेशर बहुत है, मॉरल वैल्यूज़ बहुत कम हैं, ये सीखने की बहुत ज़रूरत है, किसी के पास फुर्सत नहीं है इसको सिखाने की।
1: ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन। सबसे पहले हमको बच्चों में और आपस में भी बात कर रहे हैं, तो ये कंपैरिजन हमको ख़त्म, एकदम ख़त्म कर देना चाहिए। एवरी चाइल्ड इज़ इम्पोर्टेंट, एवरी चाइल्ड इज़ स्पेशल।

0: जो भी बच्चा कर रहा है, कितना एग्ज़ाम में कितना मार्क्स ला रहा है, नहीं ला रहा है, वो उस बच्चे की आप कितनी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उस पर काम करें, ना कि हम किसी को भी कंपेयर करें। तो जो कंपैरिजन की टेंडेंसी है हमारी टीचर्स को, हमारे घर में, पेरेंट्स को और दोस्तों में भी, इसको पहले ख़त्म करना चाहिए। अननेसेसरी, दिस इज़ अनहेल्दी कॉम्पिटिशन।
1: और इसके लिए आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि जो पेरेंट है ना वो खुद कंपैरिजन करना बंद करें।
0: बंद करें।
1: सबसे पहले आप खुद कंपेयर करना बंद करिए, और फुर्सत की तो बात करिए ही मत, क्योंकि बच्चे के साथ अगर आप बच्चा दुनिया में लाए हैं ना और आपके घर में बच्चा है, तो आपको फुर्सत तो निकालनी पड़ेगी। उसकी सिर्फ फिजिकल केयर और फिजिकल नीड्स को नहीं लुक आफ्टर करना है, उसकी इमोशनल नीड्स को, उसकी सोशल नीड्स को भी आपको लुक आफ्टर करना है। इसीलिए अगर आपने पेरेंट बनने का जिम्मेवारी ली है तो आपको उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। आई मीन दैट्स अ गिवन। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि बिफोर यू बिकम अ पेरेंट, बी रेडी फॉर पेरेंटहुड, बिकॉज पेरेंटहुड इज़ अ लॉन्ग जर्नी, और
2: जी
1: उसके लिए उसका कोई एस्केप रूट नहीं है, वो तो करना ही पड़ेगा। अगर आप बच्चे को लाए हैं तो उसको समय देना होगा।
2: जी और आजकल हम यही देखते हैं कि ये जो बात हो रही है, फुर्सत नहीं है, ये तो एक अलग बातचीत का मुद्दा है, लेकिन लेट मैरिजेस हो रही हैं, मदर्स और फादर दोनों लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं उनके, तो जब लेट मैरिजेस हो रही हैं, बच्चे प्लान कई बार नहीं कर रहे हैं या बहुत लेट कर रहे हैं, तो क्या वो भी इम्पैक्ट डालता है?
1: एब्सोल्युटली डालता है। और उसके लिए अगेन, जब आपने लेट मैरिज करी, आप अपने अपने करियर पाथ में बहुत एंट्रेंच हो गए हैं दोनों माता पिता, पर अगर आपके लाइफ में एक बच्चा है, जैसे डॉक्टर अली भी कह रहे थे, तो बच्चे को नैनी, बच्चे को दादी नानी के ऊपर ना छोड़कर अपना समय, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए भी आपको बच्चे के साथ समय, सबसे ज़रूरी बच्चे के साथ समय, बच्चे को सुनना, बच्चे के साथ कनेक्ट बनाना, उसको कडल करना, उसको इमोशनल इमोशनल उसके साथ चीज़ें करना, कहानी साथ बनाना, सैर पे साथ जाना, उसके साथ खेलना, तो एक बॉन्डिंग आपको बचपन से ही अपने बच्चे के साथ बनानी पड़ेगी, फिर अडल्टहुड में वही बॉन्डिंग आसान होती चली जाती है।
2: अच्छा, बहुत एक सेंसिटिव इशू मैं अभी लाना चाह रही हूँ जो हम अभी तक बात नहीं कर पाए हैं, कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिसेबिलिटीज़ होती हैं बच्चों को, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, और उस तरह के जो बच्चे होते हैं उनको डील करना थोड़ा सा टिकलिश होता है पेरेंट्स के लिए, तो कैसे उनको अलग से डील किया जाए, ये भी एक मुद्दा है समझने का।
0: हाँ, अगर आपका बच्चा फिजिकली स्पेशली एबल्ड है या मेंटली स्पेशली एबल्ड है, तो सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप उसको सही डॉक्टर के पास दिखा के, अगर ये प्रॉब्लम है तो उसके एक्सेप्ट करें। बहुत से पेरेंट बहुत सा समय आधा डाल देते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, या हुआ है तो क्यों हुआ है, या हमको श्राप हो गया है, या ये, तो उसको एक्सेप्ट करें कि ये है। कोई भी बच्चा हो या किसी में भी कोई भी फिजिकल एक स्पेशल ये है, तो कोई ना कोई उसका दूसरा बात ऐसा होता है कि वो उसमें चैम्पियन बन सकता है, तो उस बात को हम देखें, उसको मैं बच्चे को भी ये बताए कि भाई तुम्हारा एक चीज़ का प्रॉब्लम है, जैसे लोकोमोटर प्रॉब्लम है, हाथ नहीं है या पैर नहीं है, तो दूसरी कोई बात हो सकती है, उसको हम निखारे बाहर और बच्चे को उसके अंदर एक्सेल करने के लिए उसकी मदद करें, उसका साथ दें। बहुत बार होता है कि पेरेंट्स समझते हैं मेरे ही बच्चे को क्यों हुआ, तो पेरेंट्स के एसोसिएशन इंडिया में बहुत जगह है, आपके गांव में, आपके शहर में होंगे, पेरेंट्स एसोसिएशन एक नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में परिवार के नाम से चलता है, उस एसोसिएशन से आप जुड़िए। उसमें ऐसे ही बच्चों के बहुत से पेरेंट्स एक साथ आते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, गाइडेंस बताई जाती है, बच्चों को क्या लाभ मिलेगा सरकार से ये बताया जाता है। तो जब आप देखते हैं कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ इस जर्नी में, बहुत से लोग हैं, तो एक साथ मिलकर उस बच्चे को क्या उसके अंदर निखारा जा सकता है, उसको निखार के उसको चैम्पियन बनाया जा सकता है।
2: जी, तो प्रयास किए जा सकते हैं। और आपने बताया कुछ जो ये साइट्स हैं, क्या हैं जिनके बारे में आपने बताया कि उनसे
0: ये
2: जुड़ा जा
0: साइट,
2: सकता
0: हाँ,
2: है?
0: परिवार करके आप डालोगे, एनजीओ फॉर पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, तो ये साइट पे जाके आप जुड़ सकते हैं इसके साथ।
2: अच्छा, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट और मुद्दा होता है कि कम्युनिकेशन तो कई बार होता है, लेकिन सेक्स एजुकेशन जो है उसमें अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स खुलकर अपने बच्चों से बात नहीं करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है जब एक ग्रोइंग बच्चा है घर में, एडोलेसेंट हो, तो कितना इम्पॉर्टेंट है? मैं दोनों का व्यूज़ जानना चाहूँगी, अलका जी आपका भी और डॉक्टर अली आपका भी इस बारे में।
1: एडोलेसेंस में एक चीज़ जो हमें ऑब्वियसली दिखने लग पड़ती है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो लड़कियों में अलग किस्म के चेंजेस होते हैं और लड़कों में अलग किस्म के।

0: चेंजेस होते हैं, इसके बारे में बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। आपको सेक्स एजुकेशन तो आ ही जाएगी, पर सबसे पहले तो ये जो हमारे चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। तो हम जैसे समाज में लड़के और लड़कियां और इस बदलाव के बारे में बात से शुरू कर सकते हैं कि अभी आपको लग रहा होगा लड़कियों में ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रही है, उनको मैन पीरियड्स आने शुरू हो रहे हैं, इससे बातचीत आप शुरू कर सकते हैं। एंड देन इवेंचुअली आप सेक्स एजुकेशन क्या होगा, तुम्हें लगता होगा लड़कों की रुचि तुम्हारे में बढ़ रही है, या लड़कों के साथ भी बात की जाती है। मेरे हस्बैंड ने खुद मेरे बेटे के साथ ये सबसे पहले उनका जो पहला लंच हुआ था इकट्ठा, ऑफ कोर्स हैविंग बीन टुगेदर, बट एक मैन टू मैन लंच उनका इकट्ठा हुआ था, वही बात थी कि तुम्हें अब लग रहा होगा कि तुम अपनी क्लास की लड़कियों के साथ आइडेंटिफाई करो, किसी के साथ ज़्यादा घूमना चाहते हो। ये इनके बारे में बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, और ये बातचीत जब हम करने लगेंगे एज पेरेंट्स तो वो फिर एक बॉन्डिंग बनती है, वो एकदम से नहीं हो सकती। अगेन, बचपन से अगर आप अपने बच्चे के साथ खुलकर बात करना शुरू करेंगे तो 10, 11, 12 साल की उम्र पे ये बातचीत बहुत आसानी से हो सकती है। पर
1: जी
0: हमने बचपन से ही कभी बात ही नहीं करी, कहानियां नहीं सुनाई, कहानियों से जुड़ते हुए क्यों क्यों के सवालों के जवाब नहीं दिए, सच जवाब, तब तक फिर आप बाद में एकदम से ये बात नहीं
1: जी
0: उठा
1: जी
0: सकते।
1: और जब पेरेंट्स से ओपन कम्युनिकेशन होगा तो फिर उनके किसी और सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि
0: बिल्कुल।
1: वो सोर्स कई बार गलत भी होते हैं, गलत डायरेक्शन में भी उनको भेज सकते हैं। आप क्या
2: तो
1: कहेंगे?
2: सेक्स एजुकेशन के बदले अब हम लोग काम बात शुरू करें कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं पूरे इंडिया से कहना चाहता हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक्सेप्ट किया है। इसमें 8 अलग अलग बिंदु हैं। सबसे पहले हम बात करें रिलेशनशिप्स की, हम बात करें वैल्यूज़ कल्चर, हम कैसे बड़े हो रहे हैं, जेंडर को हम अंडरस्टैंड करें, जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या है, वायलेंस और कैसे स्टे सेफ कर सकते हैं इसकी बात करें, हेल्थ हेल्दी वेलबींग की बात करें, ह्यूमन एनाटॉमी की बात करें कि लड़के में लड़की में क्या है, उसके बाद सेक्सुअल बिहेवियर और लास्ट में आता है सेक्स एजुकेशन या रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इन सब चीज़ों की बातें अगर हम बच्चा जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है स्लोली स्लोली अगर हम इन बातों पर करेंगे तो ये जो दिक्कतें आ रही है, डायरेक्टली सेक्स एजुकेशन की बात करना इंडिया के कल्चर में बहुत डिफिकल्ट है पेरेंट्स के लिए। हमने आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम में टीचर्स को भी इसकी ट्रेनिंग दी है, बट अभी भी टीचर ये बोलते हैं कि भाई कैसे पढ़ाएं यंग बच्चों को, बड़ा डिफिकल्ट है। तो अगर कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन इसके माध्यम से हम शुरू करते हैं, क्यों क्यों वाला जो सवाल जवाब होता है, तो आप यू कैन रीच टू दैट पॉइंट व्हेन पेरेंट्स एंड बच्चा आपस में बात कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 8 पॉइंट्स जो आपने बताए हैं ये सबको समझना बहुत ज़रूरी है। और चल, अब हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है, तो चलते चलते बस मैं चाहूँगी थोड़ा नटशेल में आप बताएं क्या आज का जो विषय है उस पर आप हमारे श्रोताओं को बोलना चाहेंगे चलने से पहले।
0: आप पेरेंट हैं तो आपको अपने बच्चे के साथ बॉन्ड कब बनाना पड़ेगा, और वो बॉन्ड शुरू होगा बात करने से, लिसन करने से, उन्हें अंडरस्टैंड करके रिस्पेक्ट से उनको सपोर्ट करने में। तो बात करिए, सुनिए उनकी बात, समझिए उनकी बात, और फिर रिस्पेक्टफुली मिलकर सॉल्यूशन ढूंढिए। ज़रूर आपके लिए ये जर्नी बहुत ही सिंपल और आसान रहेगी।
1: डॉक्टर अली,
2: सारे बच्चे का पूरा डेवलपमेंट देखिए, मानसिक फिजिकल स्पिरिचुअल सोशल किस तरह से बच्चा कर रहा है, और शुरू से अगर बच्चे से जैसे मैडम ने कहा कि बॉन्डिंग अगर होती है तो ये सब के पता करना बच्चा हमारा किस स्थिति से गुजर रहा है, और स्पेसिफिकली फिजिकल तो दिक्कत आता है, मेंटल दिक्कत नहीं आता, बच्चे से वार्तालाप करने से कम्युनिकेशन करने से ये चीज़ों को हम लोग हल कर सकते हैं।
1: जी, तो अपने सभी श्रोताओं का धन्यवाद देते हुए कि जो इस कार्यक्रम से जुड़े, हमें मैसेज किया, हमें कॉल किया। आप अगर हमें कुछ और लिखना चाहते हैं, आप हमें कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, या किसी कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। और अब धन्यवाद दूंगी अपने आज के रेडियो डॉक्टर्स का, डॉक्टर सैयद हूबे अली हमारे साथ रहे। आप हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं यूनिसेफ इंडिया में, और अलका मल्होत्रा जी आप सोशल एंड बिहेवियर चेंज स्पेशलिस्ट लिस्ट हैं। आप दोनों आए इस विशेष अंक में, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स पर हमने ढेर सारी बातें की, आपने बहुत सारी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू,
1: थैंक यू। और स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का भी नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: चाहते जब मैं दिल का बजाऊं, मैं दिल का बजाऊं एक तारा। मेरी भैंस को डंडा, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, वो खेत में चारा चरती थी, तेरे बाप का वो क्या करती थी।
1: तेरी भैंस को डंडा क्यों मारा।
2: हाँ जी, हाँ जी दोस्तों, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा है तो जी बात डिस्कस करांगे। वो तो पहला साढ़े एक स्रोते है, उन्होंने ही गलबात करते हैं जी। स्वागत किया जाए यों करके जी। हेलो
3: हेलो जी, जी नमस्कार जी।
2: नमस्कार सर, नमस्कार। की नाम है थोड़ा सर?
3: राम रवाया शर्मा, पिंड समराए, जिला जलंधर तो बोल रहे जी।
2: हाँ जी राम जी, बहुत स्वागत है जी। जेड़ा तुसी वर्ड बोले लुभाया जी, है लुभाया जी, है ना जी।
3: तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत है जी। दुध देने जी, दुध वाला जी, दुध बगैर सरदा नहीं किसी का भी।
2: सही है जी, सही है राम लुभाई। वो तो पहला एक सवाल आ रहा मन विच, कई नाम ना बड़े मुंह खोल के बोलने पेंदे जी, जिदा लुभाया जी, लुभाया।
3: बिलकुल
2: मूह खुल जांदा ज्यादा। हां जी राम लवाया जी, की हाल चाल ने पहले दसो।
3: बहुत वधिया जी जी, तुसी हरेक जदों भी आउने आ
2: तीसरी ताड़ी मेरी सी जी, सुन गई हो। दो चार पांच सेकंड बोले ही नहीं, मैं कित्थे गए थी, कहिंदे फोन गिर गया जी ताड़ी मारन दे चक्कर च। और की और की राम लवाया जी, कोई सवाल आ रहा तुहाडे, मतलब तुहाडे लई।
3: हाँ
2: जी, दुध देखो जी, दुध तो असं कर लिए, दुध तो तक मतलब पीने भी हाँ, पर ना चीजा बनिया बनिया दुध तो जी।
3: हाँ जी,
2: और की बन दया तुम कुछ आइडिया, मैंने कोई पांच छे चीजा दस दो वधिया जिया।
3: ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਬਰਫੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਤੇ ਪਨੀਰ ਬਣਦਾ, ਪਨੀਰ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਖੋਏ ਤੋਂ ਕਈ ਕੁਛ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾ, ਰਸਗੁੱਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ।
2: ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਨੀਰ,
3: ਤੁਸੀਂ ਰਸ ਮਲਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਰਸ ਮਲਾਈ ਵੀ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਆ ਜੀ।
2: ਹਾਂਜੀ, ਪਨੀਰ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਪਨੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਸਣ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਸਰ।
3: ਹਾਂਜੀ,
2: ਬੇਸਣ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਪਨੀਰ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਵਿੱਚ। कुछ खान नू जी, ठीक है जी। हां जी बेचारे, मैनु दसो सर, गधे नू डंडे को पेंदे ज्यादा?
3: खोपे
2: की अखा ते बंद दिते जांदे ही वैसे।
3: अखा ते बंद दिते जांदे, अपने आप ही जाने के ऑटोमेटिकली काम कर देंदे।
2: हां ताकि इना ध्यान ना पटक जे।
3: हां बिलकुल बिलकुल
2: जी, बेचारे दी। देखो मैं तुम दसा, गधे की आवाज ना बहुत स्वीट होंगी होनी, इना समान लदता, जोर लागे ऐदा बोलता जी।

0: जी भोजपुरी भी गा लेंदे तुसीं?
1: गा सकदे हाँ, भोजपुरी दे बहुत सारे गीत ने, बट
0: जी
1: इत्थे मैनूं दिल कर रहा कि मैं कोई कजरी या कुछ इदां दा होर सुना देवां।
2: जी
0: बिल्कुल जी
2: जी
1: बिल्कुल। चैती सुना दिंदी हाँ।
2: जी।

हेलो हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश स्वागत करता थोड़ा FM 102.7 MHz से। वेल दोस्तों, प्रोग्राम लव यू जिंदगी जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। जिंदगी एक अनमोल तोहफा है जो सानू रब वालों मिलया है। यह सिर्फ साह लैण दा नाम नहीं, सगो हर पल नू महसूस करन, सीखण अते अगे वधन दा नाम है। जिंदगी विच ना खुशियां भी हन ते गम भी, कामयाबी भी है नाकामी भी, पर असल गल यह है कि हर तजर्बा सानू कुछ ना कुछ सिखाउंदा है। जे असी ध्यान नाल वेखिए तां हर मुश्किल सानू मजबूत बनाउंदी है अते हर खुशी सानू शुक्रगुजार बनाउंदी है। दोस्तों, सानू जिंदगी नाल प्यार क्यों करना चाहिदा है, क्यों यह सानू मौका दिंदी है, क्यों साडे सुपने पूरे करन दा, अपने प्यारिआं नाल समां बिताउण दा ते अपनी पछाण बनाउण दा। जे असी जिंदगी नू नकारात्मक सोच नाल वेखांगे ते हर चीज़ भारी लगेगी दोस्तों। ते जे साडे मापे साडे नाल ना होण, सानू सपोर्ट ना करन, ते की होवेगा जिंदगी विच। जिंदगी नाल जिहड़ा प्यार करन दा मतलब है ना दोस्तों, अपने आप नू कबूल करना, अपनी गलतियां तों सीखना ते हर नवे दिन नू नवी उम्मीद नाल स्वागत करना। जिंदगी छोटी है इसलिए इसनू गिले शिकवे विच ना गुजारो, मुस्कुराओ, धन्यवाद करो ते हर पल नू खुशी नाल जियो ते अपने जिहड़े मापिआं नू समां जरूर दो। दोस्तों, वैसे असी गल करांगे अपने पेरेंट्स दे, उहनां बारे आपां जाणांगे कि असी मापिआं तों बगैर की हाँ ते मापे साडे लई की ने। लव यू जिंदगी शो विच अज इसी गल ते चर्चा करेंगे ते बहुत सारियां गल्लां बातां करेंगे, पर उस तो पहला एक सोहना जिहा गीत थोड़े सामने पेश करदा दोस्तों। आई होप तुसी जिहड़ी आवाज़ चकली होगी रेडियो दी एंड पहला सोंग गुरदास मान साहब जी दा मापे।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: दोस्तों, तुसी सुन रहे हो FM बैंड 102.7। ते दोस्तों, माँ प्यो जिंदगी

0: है।
1: बेटा
2: याद है बोनस दे कुछ पैसे असि किसी होर खाते विच रखे सन।
1: दो साल तो खाते विच कोई लेन देन नहीं होया है। हो सकता है इनऑपरेटिव हो गया होवे।
3: ता हुन बैंक जाओ जा वीडियो केवाईसी राही केवाईसी अपडेट करवाओ। खाता होवेगा एक्टिव बिल्कुल मुफ्त। चलो
0: किथे
3: एडमिशन लेन ली खाता होया एक्टिव।
4: आरबीआई कहंदा है
5: जानकार बनो सुचेत रहो।
6: बेड़ी दा पूर तरिंजन दिया

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: दोस्तों तुसीं सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी, ते आपां फलसफे ते गल कर रहे सी पापिया दी, ते एक होर फलसफा है कि माफ़ी दा फलसफा। उस तो पहला साडे सरोते ने सानू एक मैसेज भेजा है, आर जे रवनीश जी, माँ दा जिहड़ा दूसरा नाम है ना गॉड है। जे इस धरती ते माँ ना हुंदी तां दुनिया ना हुंदी। माँ है तां दुनिया है। प्यार दी परिभाषा बच्चा माँ कोलों ही सीखदा है। क्या बात है जी। माफ़ी दा फलसफा की गल करते हैं कि कुट्टन वाला हाथ सहलाउण वाला भी उही। कहन दा मतलब दोस्तों, माँ प्यो सानू कुटदे भी ने ते साडे हंजू भी पूंजदे ने। दुनिया च केड़ा रिश्ता है जिससे गुस्सा ते प्यार इक्को दिल च निकलदे ने। स्पिनोज़ा कहिंदे सी कि सच्चा प्यार उह है जो दूजे नूं उह बनण च मदद करदे जो उह बन सकदा है। माँ प्यो सानू कुट के बुरा बच्चा नहीं बनाउंदे, उह सानू चंगा इंसान बनाउण दी कोशिश करदे ने। उदाहरण देंदे आ कि बेटा जेकर पेपर च फेल हो जांदा है, माँ पहला डांटदी है, कुछ नहीं पढ़ता तू। 5 मिनट बाद उही माँ उसदे सिर ते हाथ फेर के कहिंदी है, कोई गल नहीं पुत, अगली बार हो जाएगा, चाह पीएगा। ए है बिना शर्त माफ़ी दोस्तों। उस तो बाद आता है मौत ते अमृता दा फलसफा, यानी कि शरीर मरदा है, रूह रहिंदी है। माँ प्यो सानू सिखाउंदे ने कि मौत अंत नहीं। जदों दादा दादी चले जाते हैं, माँ प्यो कहते हैं वह तारा बन गए ने, रोज़ रात को तेनों वेखणगे। वो सानू सिखाते हैं कि चंगे काम करो, नाम कमाओ, ता जो लोग थोड़े मरण तो बाद भी याद रखण। यही अमरता का फलसफा है। उदाहरण वजो दोस्तों, एक प्यो अपने बेटे को कहता है, पुत मैं मर भी गया तो लोग तेनों वेख के कहणगे, ये तो उस सच्चे इंसान का बेटा है, वह अपने बेटे राही जिउणा चाहुंदा है। ऐसा सिट्टा है दोस्तों कि ऋण जिहड़ा कदे मुकदा नहीं। फलसफे की भाषा विच माँ प्यो दा ऋण जिहड़ा ऋण है, अनंत ऋण है। तुसी उन्हां नूं पैसे दे सकते हो, पर घर दे सकते हो, गड्डी दे सकते हो, पर उन्हां दीआं 2 बजे दीआं रातां, उन्हां दे सुक्के हंझू, उन्हां दीआं मुक्कियां इच्छावां दा मुल कौण पा सकदा है। कबीर जी ने कहा सी कि जनी जने ता की पया, गर्भ तार मेरी, ऐसो सतगुरु किन्ने मिले, जो जन्म मरण मिटाई। माँ प्यो सानू जन्म देंदे ने, पर एक चंगा माँ प्यो सानू मुड़ जन्म भी देंदा है, एक चंगे इंसान दे रूप च। इसलिए जो मौका मिले ना दोस्तों, उन्हां दे पैर छू लिया करो, उन्हां नू दस्या करो कि मम्मी पापा आई लव यू। क्योंकि फलसफा किताबा च नहीं, उन्हां दियां जिहड़ियां झुरड़ियां वालियां हथेलियां च लिखिया है दोस्तों।

वेल वेल वेल दोस्तों, इस एज आई लव यू जिंदगी। अखीर विच यही कहूँगा दोस्तों कि जिंदगी पूरी नहीं होंदी पर सोहनी जरूर बनाई जा सकती है। आओ इस नू मिलके कहिए लव यू जिंदगी, चाह दी चुस्की, प्यारियां गल्लां ते जिंदगी नाल प्यार। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਲਵ ਯੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸਟੇ ਟਿਊਨ ਗਾਇਜ਼, ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੌਣਕ ਲਾਨ। ਸਟੇ ਟਿਊਨ ਗਾਇਜ਼, ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ।

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड गुड इवनिंग दोस्तों। लेट वाली गुड इवनिंग दोस्तों, ते जिंदगी जिंदाबाद। जी हाँ दोस्तों, FM रेनबो ते इस वक्त समा हो चुका है शाम के 7:03 ते 47:48 एंड FM रेनबो ते आ चुका है, शुरू हो चुका है प्रोग्राम फिल्मी दुनिया। इस प्रोग्राम नू लैके हाजिर हो चुका है तुहाडा दोस्त मोहित रूबल, जिस दे नाल तुसी अज दा खास सम खास प्रोग्राम जिहड़ा है वह इंजॉय करोगे। इस प्रोग्राम नू तुसी इंजॉय करोगे 102.7 FM रेनबो दे नाल नाल साडा जिहड़ा एप्लीकेशन है न्यूज़ ऑन एयर, उहदे ते तुसी इस प्रोग्राम नू खूब चंगी तरह इंजॉय करोगे। तो जनाब, अज दे जिहड़े सितारे ने जिन्हां बारे असीं गल करना है, बहुत बहुत खास स्पैशल एंड तुसी सारे कहोगे कि हाँ वाकई। सो सब तो पहला असी गल करांगे भारतीय सिनेमा दी उस महान कलाकार दी, जिसका नाम लेंदे भारतीय फिल्म इतिहास दी एक सुनहरी जिहड़ा दौर है ना, वह बहुत सारे लोगों की अखां दे अगे आ जांदा, क्योंकि उन्होंने जिन्नियां फिल्मां कीतियां, जिहो जे करैक्टर निभाए, वह लोगों के दिलों के एक खास थां रखी बैठे ने। जी हाँ, एक ऐसी अदाकारा जिसने प्यार भी निभाया, परिवार भी निभाया, समाज सेवा भी की, अपनी

जी हाँ दोस्तों, अज असीं गल कर रहे हैं एक ऐसी कलाकार जिन्हों ने बहुत सारा एंटरटेन किया एंड बहुत घट लोग जानते होंगे कि नरगिस दी जिहड़ी फैमिली है, नरगिस जिहड़े माता जी सन, वो आप ही एक बहुत वड्डे अपने समय दी मशहूर गायिका ते फिल्म निर्माता सन, जिन्हों का नाम सी जदन बाई। जी हाँ, यानी कि असीं कह सकते हैं कि उन्हों का घर का माहौल ही एक कला दे नाल सी। एंड छोटे होंदे ही, बहुत छोटे होंदे ही, नरगिस ने पहली बार कैमरा जिहड़ा है फेस कर लिया सीगा ते एक किरदार जिहड़ा निभाया सी। जी हाँ, मात्र 6 साल की उम्र दे विच फिल्म तलाशे हक दे विच वो पहली बार नज़र आए सी ते लोगों ने शायद उस टाइम उन्होंने वेख्या भी होएगा, पर किसी ने शायद यह नहीं सोचा होगा कि एक छोटा जा जिहड़ा नन्ना जा किरदार एक कुड़ी जिहड़ी है प्ले कर रही है, अगे जाके भारतीय सिनेमे का सब तो वड्डे जिहड़े महान अभिनेत्रियां है उन्होंने विचों एक गिनी जाएगी, नरगिस दत्त।

0: बोलो क्या?
1: जी जिवें दाने उपर दाना इचक दाना विचक दाना इदा ही जदों पहली बार जदों आप गल करते हैं कि पहली बार कदों मौका मिलिया सो 1943 दे विच होना दी तकदीर बदलन वाली फिल्म का नाम सी तकदीर। जी हाँ 1943 दे विच तकदीर फिल्म आती है जिथे नरगिस जिहड़े ने बतौर हीरोइन काम करते हैं तो उन्होंने पछाण भी मिलती है पर फिर भी बड़े घट लोग होंगे ने जिन्होंने पहली मूवी तो बाद ही एक चंगा स्टारडम एक चंगिया फिल्मा एंड चंगा रुतबा एंड सब कुछ मिल जाए। असल दौर इन्हों का उदों चलिया जदों राज कपूर साहब के नाल उस टाइम के लजेंडरी मेल एक्टर जदों उन्हां दे नाल बैक टू बैक ऐसिया जोड़ी वजो इन्हां दीआं फिल्मां आईयां जो कि लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा पसंद किए। जी हाँ बरसात अंदाज आवारा श्री 420 ते चोरी चोरी।

जी हाँ, आइकॉनिक जिहड़ा गाना है वह भी सुमन कल्याणपुर जी की ही आवाज़ का है, ना ना करते प्या तुम्हें से कर बैठे। वैसे उस वेले ना जदों सुमन जी प्लेबैक सिंगर बने तो बहुत सारे लोगों ने ना एक कंपैरिजन जहा किया कि थोड़ी आवाज़ ना लता मंगेशकर जी के नाल बड़ी जुड़ती पई है, तो उन्होंने किते किते तो कॉम्पलीमेंट भी लिया कि नहीं एड्डी वड्डी कलाकारा का नाम अगर मेरे नाम के नाल अगर जोड़िया जा रहा तो ठीक है, पर कई क्रिटिसाइज भी करते सन कि नहीं आवाज़ तो सेम ही लगती पी है, तो पर उन्होंने इस चीज़ को कभी कमजोरी नहीं बनन दिता। तो ईवन उन्होंने कहा जी इवन

जी पुकारदे पुकारदे गले च थोड़ी जी खराश जिहड़ी हो गई सी, सॉरी माफी चाहुंदे आ। ओके सो जिवें लोकां ने थोड़ा जिहा क्रिटिसाइज किया कि थोड़ी आवाज़ जिहड़ी है लता मंगेशकर जी दे नाल मिलदी है, तो गुणा ने कहा कि हाँ ठीक है ना, छोटे हुंदे तों उन्हां नूं सुनदे आ रहे हैं, कॉलेज डेज तों उन्हां नूं सुनदे आ रहे हैं, तो नैचुरल ही हो सकता है। बट फिर भी हौली हौली जदों ही उन्होंने अपना कोई गीत मिलिया, फिल्म मिली, गाने मिले, उन्होंने अपनी एक वक्री मिठास, वक्री ऐसी पछाण जड़ी है बना रही कि हाँ हूँ लोग आप कह देते हैं कि नहीं नहीं नहीं आवाज़ लता जी की नहीं, आवाज़ सुमन जी की है, सुमन कल्याणपुर जी की।

जी दोस्तों, वाकई सारे नु खबर हो गई सी कि बई सुमन जेड़े ने वो ऐसे एक प्लेबैक सिंगर ने हुण जिन्हां ने तमाम किन्ने खूबसूरत सोलो डुएट हिट सॉन्ग्स दिते, कि फिर उन्हां दे बगैर फिल्म जेड़ी है काफ़ी बारी अधूरी अधूरी जी लगन लग पई। सो बट अफसोस अफसोस कहिए या कोई होर वर्ड यूज़ करिए, क्योंकि उन्हां दी फैमिली या वैसे भी एक सोहनी चंगी उम्र दे विच 89 दे विच एंड सोहनी जिंदगी जी के सोहना करियर अपना हंडा के वो सानू सारे नू कल विदा आ गए ने। एंड मुझे लगता कि आप एक चंगी बाय बाय, एक चंगी ट्रिब्यूट, एक चंगा फेयरवेल जड़ा दे सकते हैं, जो कि असी अज कोशिश की है प्रोग्राम फिल्मी दुनिया के उन्होंने देन की, क्योंकि इन्ने खूबसूरत गाने ने। एंड जिमें असी मैं हमेशा जिक्र करता कि जदों तक रेडियो रहेगा, जदों तक पुराने

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वंस अगेन लेट वाली गुड इवनिंग दोस्तों। शाम के 8:04 हो चुके ने एंड आई नो कि प्रोग्राम जड़ा है वो शुरू हो चुका, जिसका नाम अजी मसाला मिक्स। बहुत सारी गल्लां करांगे एंड मैं भी दस देवां कि भाई आई नो कि भाई अज 1 जून है एंड पहले दिन ही तुहानू सोमवार मिल जावे। मतलब है ना, लोग कहिंदे ने कि भाई मैं तो ना उदों काम करांगा या करांगी जदों ना हफ्ते का पहला दिन मंडे होवे, यानी कि महीने का पहला दिन जड़ा है मंडे होवे। देख लो जी, जून भी है तो मंडे भी है तो होर किहड़ी मोटिवेशन लभ रहे हो। सो बहुत सारी गल्लां करांगे जो कि तुहानूं मोटीवेट भी करनगियां, तुहानूं जानकारी भी देनगियां, क्योंकि प्रोग्राम ही कुछ ऐसा है मसाला मिक्स, यानी कि बहुत सारिया गल्लां दा मिक्स। पर फिलहाल मैं एक बड़ा खूबसूरत गीत लैके आया तुहाडे सामने, गीत तों बाद करांगे गल्लां दा सिलसिला शुरू।

जी दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है जी प्रोग्राम मसाला मिक्स विच। एंड मैं सब तो पहला गल ही करांगा जेदियां गल्लां आज सारी सारिया कंट्रीज कर रही ने। जी हाँ, कल्ला इंडिया नहीं कर रहा, सारी कंट्रीज कर रही ने, क्योंकि कल जड़ा मैच सीगा, नो डाउट मैच ता सीगा कल GT यानी कि गुजरात टाइटन्स एंड RCB रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के विचकार। राजस्थान जड़ी है 3 दिन पहला बाहर हो जाती है, बट फिर भी लड़ाई दो जण्यां दी ते जिक्र हो रहा है वैभव सूर्यवंशी दा। कारण है क्योंकि एक मात्र 15-16 साल दा मुंडा जिन्हें इन्ने वड्डे धुरंधर, पूरी दुनिया के धुरंधर, क्योंकि जिहदे विच तुहाडे कोल जी विराट कोहली भी है, फिर शुभमन गिल भी है, फिर बटलर भी है, एंड जोफ्रा आर्चर, फिर होल्डर, फिर बहुत वड्डे वड्डे नाम, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ईवन बांग्लादेश एंड इंग्लैंड, वैसट इंडीज़, जिम्बावे, किन्ने वड्डे वड्डे प्लेयर। एंड इन्हां सारे प्लेयर्स दे विच छाया कौन? राजस्थान रॉयल्स दे विच खेड रहा 16 साल का लड़का जिन्हें सब तो ज़्यादा स्कोर किए, जी हाँ 776 रन जिहड़े ने स्कोर किए ने। एंड कल भी उन्हों ग्राउंड दे विच देखा गया। कारण की सीगा कि एक पूरी जदों IPL का टूरनामेंट खत्म होना सीगा ते इनाम देना सीगा, ट्रॉफी दिती जानी सीगी कि हाँ बई किहड़ा किहड़ा ने सब तो सोहना जिहड़ा खेडिया। तो वैभव सूर्यवंशी नूं बुलाया गया, 776 स्कोर। जो वैभव नूं पुछया गया कि तू प्लैन वगैरह किया सीगा कि कुछ इन्ने स्कोर होणगे, तो उन्हें कहा कि हाँ मैं सीरीज़ शुरू होने तो पहला ही एक चिट लिख के अपनी पॉकेट च पा ली सी कि हाँ मैं कुछ करना। एंड तुसी मेरी गल तो थोड़ा जा अगर रिलेटेबल होने की कोशिश करो तो सिमिलरली उन्हें भी किया सीगा अभिषेक शर्मा ने, सिमिलरली एक होर कलाकार ने, उन्होंने भी किया सीगा। सो कहन दा भाव है अजकल जो पूरी दुनिया में चल रहा है इनू आपां एक वर्ड दिंदे आ जिहदा नाम है जी मैनीफेस्टेशन। यानी कि तुसी अगर चंगा बोलदे हो, चंगा सुनदे हो, चंगा लिखदे हो, चंगा अपने आप लई एक ना यूनिवर्स नूं मैसेज भेजो कि हाँ मैं चाहुंदा कि मैं जी 2026 दे एंड तक ना मैं हर चीज़ तो मुक्त हो जावां, जो भी कलेश, जो भी समस्यावां चल रहियां ने वह मुक्त हो जाए। एंड यकीनन वह परमात्मा सुनदा एंड वह चीज़ां हल हो जांदियां ने। यह साइंटिफिक भी लोग अजकल मान रहे ने, एंड क्रिकेट विच या आले दुआले साढ़े इंडिया विच तां बहुत सारे लोग मन भी रहे ने, एंड वह प्रूवन भी है। सो खबर की है, क्योंकि प्रोग्राम जिहड़ा है उस गल बारे है कि होया की है। सो सब तो ज़्यादा चौके जिहड़े ने मारे ने वह वैभव सूर्यवंशी ने, सब तो ज़्यादा स्ट्राइक रेट अगर किसी का रहा वा तो वैभव सूर्यवंशी का, सब तो ज़्यादा स्कोर मार के ओरेंज कैप जो किसी ने होल्ड की है तो वह भी वैभव सूर्यवंशी ने। सो कल उन्होंने बुला के 4-5 ट्रॉफीज़ जिहड़ियां ने दित्तियां गई वैभव सूर्यवंशी। एंड बहुत सारा ना मैं कहांगा कि

आंखें हैं निशानों पे निशाने कभी न चुके हैं ये खुद नहीं खरीदी ये पुश्तैनी बंदूकें हैं तेरी तरह हर बात ना अपने बॉस को एस्केलेट करूं मेरी रुकती नहीं बंदूक मार गोलियां छाती में छेद

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब वंस अगेन एंड लेट वाली गुड इवनिंग वंस अगेन। जिंदगी जिंदाबाद। जी हाँ दोस्तों, रात दे 9:04 हो चुके हैं। एफ एम रेनबो ते प्रोग्राम शुरू हो चुका जिसका नाम है जी दिल चाहता है। सो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का दिल बहुत चाहता है कि भाई हिंदी ते पंजाबी गीत जिहड़े ने ओह अक्सर सानू फरमाइश करदे ने, तुसीं भी कर सकदे हो। साडा वट्सएप ते नंबर है 9855101027 9855101027। ते बहुत सारे दोस्त ऑलरेडी मैनू जिहड़े बहुत सारे मैसेजेस जिहड़े ने ओह भेज चुके ने। चलो जी करदे हां शुरू अज दा इह सिलसिला। सब तो पहला मैसेज आया सानू जी नवी दिल्ली तो मैसेज आया सानू जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, फिल्म नीलकमल ते गीत लिखा है तुझको पुकारे मेरा प्यार। अगला मैसेज साढ़े तक पहुंचा है, लिखा है गाना आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, फिल्म ब्रह्मचारी प्यार भरी नमस्कार, हनुमानगढ़ टाउन तो गाना घमा गणिसा। हाँ तो मैसेज सू भेज रहे हैं रजाक मुहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान। ठीक है जी, थैंक यू। अगला मैसेज सुखदेव सिंह, नरिंदर कौर, सनी मुनी काका, बिट्टू लाडी, मोहन मास्टर, जनक नगर जलंधर तो लिखा है कोई भी गीत। ठीक है जी, थैंक यू। अगला मैसेज पिंड वड़िंग खेड़ा जिला श्री मुक्तसर साहब तो भोला सिंह सिद्धू, लाडी धालीवाल, जलंधर तो मास्टर मोहन लाल शौकी, अरविंद कुमार, फिल्म नूर महल का सॉन्ग मेरे महबूब ने जे आज की रात। ओके, अगला मैसेज आया जी फिल्म ब्रह्मचारी आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल। मैं लग रहा सेम ही फैमिली तो सू मैसेज आया। एक कोई पहली बार शायद साढ़े प्रोग्राम सुन रहा है तो उन्होंने मैसेज भेजा हैलो बुधराज जी ने शायद। हैलो जी बुधराज जी, तुहाडा मैसेज साढ़े तक पहुँच गया, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज है एफ एम दिल चाहता है दिल से दिल तक आर जे मोहित रूबल सर जी, प्यार भरी नमस्कार, दिल चाहता है प्रोग्राम लिसनर की पहली पसंद है, सबसे बड़ी अच्छी फरमाइश करते हैं। अच्छा, सब बड़ी अच्छी फरमाइश करते हैं, हम भी सुनते हैं सर जी आपका, थैंक यू। आपकी अदाकारी बहुत अच्छी है, प्रोग्राम पेश करने का अंदाज भी बहुत अच्छा है सर जी। आज का हमारा सॉन्ग है आपने सुनना भी है और सबकी पसंद का भी है गीत पन्ना की तमन्ना कहीं मुझे मिल। मैं आई नो आई एम नॉट अ गुड सिंगर बट स्टिल आई एम ट्राइंग माय गाइस। ओके जी, सो हीरा पन्ना का जो है वो गाना हमारे दोस्त सुनना चाहते हैं तो ये गाना हम लगाने की कोशिश करेंगे। ओके जी, अगले लिखा है फिल्म हीरा पन्ना रिलीज 1973, गायक सोरदा लता जी और मैसेज भेज रहे हैं नरूला फैमिली, किरण नरूला, ग्रीन

आर कपूथला, प्लीज धन्यवाद साहिब। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज आया, सत श्रीकाल, दिल चाहता है फिल्म आरती और गीत बार बार तो है क्या समझाएं, ये पायल की झनकार। सवर लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, गांव हांडीखेड़ा, जिला सिरसा से, राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज मेरठ किंड से, ये हम बाद में पढ़ेंगे। जी हाँ, ये हम मैसेज बाद में पढ़ेंगे, एक मैसेज और पढ़ लेते हैं जी। आया है, दिल चाहता है आज महान पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर जी का देहांत है, उस महान हस्ती को रेमबो परिवार, जलंधर और श्रोता परिवार की ओर से शत शत नमन। इन्हीं का कोई भी गीत सुना दीजिए। चक 15 PCS, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान। तो जी सरबजीत सिंह जोसन, सरबजीत कौर जोसन, गुरमन मेलबर्न, आदर्श नगर, आदर्श पाल वैंकूवर कनेडा, तो रोबिन सिंह जोसन। ठीक है जी, फिलहाल हीरा पन्ना का गीत थोड़े सारे दे रेडियो सेट से, आओ इंजॉय करते हैं।

जी हीरा ही मिला हुआ है आपको दोस्तों। जी हाँ, वो हीरा है आकाशवाणी जलंधर, जहाँ पर आप अपनी हीरे की चमक को उठाते हैं, या कह लो कि उसका लुत्फ़ उठाते हैं प्यारे प्यारे नगमों के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मोहित रूबल। समा हो चुका है रात दे 9:10:30। लो जी, हुण अगे वधदे हां। अगला मैसेज आया जी, प्रोग्राम दिल चाहता है प्रसारक नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। फिल्म चंद परदेसी गीत नारुस हीरे हीरे मेरिए, पिंड नथाणा पंजाब तो हरजिंदर छिंदा जसविंदर जसवीर जस्सी सीता और गीता खुश रहो खुशियां वंडो। फिल्म केड़ी आखी इन्हां ने? चंद परदेसी। चक ठीक है जी, चंद परदेसी गाने का बोल लिखिया इन्होंने, नारुस हीरे मेरिए। लो जी, मोहम्मद रफी साहब का गीत लभ गया। थैंक यू सो मच फरमाइश भेजन दे लई। अगे मैसेज आया करणवीर हाउस पुछो कैंचियां बठिंडा पंजाब तो, नमस्कार जी। प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिमू एकम, दमन ते अभिजोत, किसी भी गीत विच कहिंदे ने सानू शामिल किया जाए। अगला मैसेज साढ़े तक पहुँचे जी, कार्यक्रम दिल चाहता है आपका हर पल खुशियों से भरा हो। और अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गावे मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, अगर गीत नहीं चला सकते तो नाम शामिल आ रहे, नाम हो गया शामिल आपका। अगला मैसेज, व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम पेशकर्ता को प्यार भरा नमस्कार। स्वर कोकिला सुमन कल्याणपुर जी को विनम्र श्रद्धांजलि। फिल्म राजकुमार 1964 आवाज़।

सुमन कल्याणपुर है, मोहम्मद रफ़ी गीत के बोल तुमने पुकारा और हम चले आए। ये गीत मैं ऑलरेडी प्ले कर चुका था पिछले प्रोग्राम में, बट कोई बात नहीं, हम दोबारा ज़रूर प्ले करेंगे अगले गीत में। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज है, नमस्कार जी, हार्दिक अभिनंदन गायक सुमन कल्याणपुर जी को शत शत प्रणाम। आज वो दुनिया से रुखसत हो गई, उन्हीं का गीत सुनवा दीजिए, गीत नाना करते प्यार। एक गीत ज़रूर हम प्ले करेंगे, हमने 7 से 8 बजे के प्रोग्राम में उनको आधा घंटा उनको आज श्रद्धांजलि दी है। आई होप आप सभी ने वो प्रोग्राम भी सुना हो, और ये फरमाइश हमें भेजी है सतीश अनेजा जी ने, बिमला अनेजा जी ने, थैंक यू सो मच। अगले मैसेज, पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, मूवी जब जब फूल खिले ट्रैक ये समा। आइए फिलहाल ये गाना एंजॉय करते हैं चंद परदेसी मूवी का, उसके बाद सुमन कल्याणपुर जी का गाना जरूर प्ले करेंगे प्रोग्राम दिल चाहता है मैं।

जी तो सो एंजॉय कर रहे प्रोग्राम दिल चाहता है और प्रोग्राम दे विच अगे वधदे हां कि मैसेज आया। नमस्कार जी, फिल्म कोहिनूर गीत हम बेवफा हरगिज़ ना थे, मजनू कटेला, कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज कार्यक्रम दिल चाहता है फिल्म मैं हूं ना, स्वर श्रेया घोषाल, सोनू निगम। अरे यार, बहुत बहुत बहुत सदियों के बाद ये गाना जो है कानों में पड़ा है। किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार, मैं हूं ना। ठीक है जी, ये गाने की फरमाइश में भेजी है या रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा जी ने, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज दिल पर चाहता है, सबने नमस्कार, आप कैसे हैं? सर्वप्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर जी को सादर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित, सत सत नमन। फिल्म ब्रह्मचारी आजकल तेरे मेरे के चर्चे गाना सुन चुके हैं, थैंक यू सो मच। सभी की तरफ से मुझे पता है कि वो सभी को जो एक धक्का लगा, और यकीनन वो प्यार मोहब्बत सभी के दिलों से है और सभी उनको ट्रिब्यूट करना चाहते हैं। सो तहे दिल से शुक्रिया। ये मैसेज भेजा है हमें महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी जी ने, माय रेडियो माय लाइफ। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, आगे मैसेज आया हमारे पास, क्या बात है, सभी लोगों ने एक ही गीत की फरमाइश करी है, मतलब कितना प्यार करते हैं सभी सुमन जी से। गुड इवनिंग एक्सपेक्टेड होस्ट जनकपुरी सहारनपुर से, जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो, आजकल तेरे मेरे बैर के चर्चे, फिल्म ब्रह्मचारी, सिंगर सुमन कल्याणपुरी और ईयर 1968, थैंक्स, आप हमें किसी गीत में शामिल कर दीजिए। ठीक है जी, थैंक यू। अगला मैसेज फिर से, नमस्कार जी, और सेम फरमाइश जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित हुचा। आगे बढ़ते हैं, अगला मैसेज आया जी, दिल चाहता है पिंड मूलियां वाली जिला फाजिल का प्यार प्रिंट, नमस्कार, विनोद काटपाल, प्रवीण काटपाल, हनी काटपाल, दीक्षा काटपाल, जनत काटपाल, गुरलीन काटपाल, फिल्म नचती जवानी का कोई भी पंजाबी गीत। ठीक है जी, जरूर कोशिश करेंगे। अगला मैसेज पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से, अनिल मोहन, उषा मोहन, टीलू नायक, मधु नायक, धन्यवाद। ठीक है जी, सो हूँ आप एक गीत सुन लें, गीत तो बाद जो होर मैसेज ने उन्होंने पढ़ लें, तुम भी मैसेज भेज सकते हो 9855 10 10 27 के नंबर उपर।

लौट आइए। जी हाँ दोस्तों, हम वापस लौट आ चुके हैं और प्रोग्राम जैसे एंजॉय कर रहे हैं, दिल चाहता है प्रोग्राम। और आगे बढ़ते हैं, आगे हमें मैसेज आया है, इनका आया है रे गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से, दाता सिंह शेखावत, संगीता कवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, और ये हमें गाना सुना चाहते हैं, बोल दिल धड़कने का बहाना ढूंढता है। अगले में सुखबीर सिंह, कमलप्रीत कौर, रोशनप्रीत सिंह, पेंड छाजली, जिला संगरूर, एनी सॉन्ग। ठीक है जी, थैंक यू। अगले मैसेज, फिल्म धरती कहे पकार का सॉन्ग, हम थम चोरी से, के हम थम चोरी से, भेजने वाले हैं संदीप मकड़, ज्योति मकड़, मनस मकड़, भरत मकड़, कमल सानी, पिंगा वाला चौंक, राया जलंधर। तो ठीक है जी, थैंक यू। अगला मैसेज, दिल चाहता है चक 14 PSB, जिला श्री गंगानगर से, कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप कौर, जसवंत सिंह, हरदीप सिंह, मनराज वीर की ओर से नमस्कार जी, कोई भी पंजाबी गीत में शामिल किया जाए। अगला मैसेज, आपको प्रेम पूर्वक आदाब, गांव कुम्हाड़ हेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, किसी भी गीत में शामिल करें। ठीक है जी। अगला मैसेज, सत श्रीकाल, दिल चाहता है बलविंदर सरा, गुंतास, रसनदीप, मनिंदर सरा, पिंड मोरजन सिक्का, हनुमानगढ़, कोई भी गीत। ओके, करणवीर सिंह, पॉल थे पूरा पॉल परिवार, सराबा नगर जंदर तो पंजाब तो, मैं जीत न जीते जग गीत दा गीत, मन जीते जग गीत दा गीत सुनना चाहता हूँ, कोई भी गीत लगा देना जी, थैंक यू। ओके जी। अगला मैसेज, आर जे जी, आपको नमस्कार, हमें भी किसी भी गीत में शामिल करें, धनोरी तेरी वाला से, निसार सलमानी, नुशा सलमानी, बेबी आलिया, आयान और बाबू। अगला मैसेज, दिल चाहता है शो एनी सॉन्ग टू रीड आउट माय नेम प्लीज आर जे जी, फ्रॉम हितेंद्र दास, आसाम। अगला मैसेज जी, सत श्रीकाल श्रीमान जी, मेरा नाम गगनप्रीत कौर है, मैं टांडे दी रहने वाली हाँ, मैं हर रोज़ है प्रोग्राम सुनती हाँ जो कि बहुत वधिया, श्रीमान जी कृपा करके मेरा मन पसंद का गीत सुनाया जावे, दिल ने जे कहा है दिल से मोहब्बत। ओके, इदा है कि तुम अगर पहली बार सुने हो, अगर मेरा प्रोग्राम पहली बार सुन रहे हो तो मैं तुम्हें दस देवा कि मैं ना जो बहुत कॉमन जहा गाना रेडियो पर रोज़ चलता रहा ना, वो मैं ज़्यादा नहीं चला, कुछ यूनीक जहाँ वखरा जहा या फिर एक देर बाद एक गाने की फरमाइश जो रेडियो तो जी आती है मैं वह बजाने की कोशिश करता वा। ठीक है जी, तो लो जी फिलहाल एक गीत का समा हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने सू बार बार फरमाइश भेजी है सुमन कल्याणपुर जी के गीत की, तो मैं मना नहीं कर सकता। आओ सुनते हैं उन्होंने आवाज़ के एक होर खूबसूरत गीत फ्रॉम फिल्म जब जब फूल खिले।

लब जाए गाना लब गया। ओके जी, सो ये रहा, आप सभी कहते हैं कोई भी गाना लगा दो, तो ये मैंने लगा दिया कोई भी गाना। फिल्म का नाम है जाने तू या जाने ना, जिसे गाया है राशिद अली ने और वसुंधरा दास जी ने। गाने के बोल हैं कहीं तो। इस गीत को सुनना और गुनगुनाना चाहते हैं आरजे मोहित रूबल जी।

जी थैंक यू सो मच जी इस गायन इस गीत की फरमाइश करने के लिए. ओह सॉरी मैंने खुद चलाया है. ओके थैंक यू सो मच वंस अगेन. स्टिल थैंक यू सो मच. टाइम इज 9:46:26 एंड यू आर लिसनिंग फ्रॉम रेनबो दैट इज 102.7 एफएम रेनबो. माय नेम इज मोहित रेनबो. व्हाट इज योर नेम, वेयर यू फ्रॉम, व्हाट यू वांट टू लिसन, जस्ट टेक्स्ट अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर 9855101027. सो हियर इट इज आवर नेक्स्ट मैसेज. अगला मैसेज है सानु जी लिखे है होली चौंक. होली चौंक होली चौंक उत्तम नगर दिल्ली से. आपका प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लग रहा है. सभी गीत आपके एक से एक हैं. बहुत अच्छे गाने सुनवा रहे हैं आप. किसी भी गीत में हमें शामिल कीजिए. होली चौंक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल. जनाब एक चीज ना आप हमारी सुनिए. आपने एक ही मैसेज 1 2 3 4 5 6

ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 बार आपने मैसेज किया है, आपका एक मैसेज भी हमें उतनी बार ही मिलेगा जितनी 15 15 बार मिलेगा। सो कृपया एक मैसेज ही भेजें, धन्यवाद। अगला मैसेज, सर जी नमस्कार, एनी फिल्म सॉन्ग मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा कृपया शामिल करें, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। अगला मैसेज, कार्यक्रम थोड़ी फरमाइश, अरे नहीं प्रोग्राम का नाम हैगा जी दिल चाहता है, सुखिंदर सिंह की आवाज़ विच केड़ा भी पंजाबी गीत सुनवा दो जी। ठीक है जी, सुखिंदर सिंह दा केड़ा गाना सुनावा जिहड़ा मैं रीसेंटली गुणगुना रहा सीगा, बड़ा सोहना गाना सीगा सुखिंदर सिंह दा, हाँ लाई भी ना गई, फिल्म दा नाम हैगा शायद चुपके चुपके, वह लगा दिंदे आ। ठीक है, कोई फिल्म दा भी है ते सुखिंदर सिंह जी दा भी है, है ना जी। ते हुण लभणा थोड़ा जिहा चुपके चुपके सी ना, शायद उही सी चुपके चुपके, शाहरुख खान दी, नहीं लभ्या, मैं कोशिश करदा दोबारा लभण दी। उन्नी देर तक आपां अगला कोई होर मैसेज पढ़ लैंदे आ। ओके जी, अगला मैसेज है चौटाला हरियाणा तो दारा पंडित संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा गाने के बोल, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम का करें। अगला मैसेज, कार्यक्रम दिल चाहता है पेशकर्ता को प्यार भरा नमस्कार, कैसे हो जी, आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, फिल्म पत्थर दिल, आवाज़ गुदासमान, गीत के बोल, सदियां बीती कोई ना जाना। अच्छा जी, पत्थर दिल दे विच अगर यह गीत है तो जरूर चलेगा जी, पत्थर दिल दे विच असी पहुँच गए हैं, पत्थर दे रिकॉर्ड, पत्थर दे ये पत्थर, ओके यह थोड़ा जा कम हो जाता हैवी, नहीं मिला जी, काला पत्थर मिल गया सानू पर आवला नहीं मिलया, सो कोशिश फिर करांगा मैं दोबारा लभन दी गीत पर नहीं फेल। ओके जी, गाने की फरमाइश सानू भेजिए, रघुनाथपुरा सिदा सिंह गंगानगर राजस्थान सो लाल गिरी गोस्वामी, हेमलता हीना हर्षित और खुशी गोस्वामी। ठीक है जी, अगला मैसेज, फिल्म जब जब फूल गिरे सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में, नाना करते प्यार। ठीक है जी, श्रोता रघुवीर नगर से, दिलावर खान, हसीना बानो, एलिया नयाब और लड्डू। ठीक है जी, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँची है पिंड हीरावाली जिला फाजिलका दे पक्के श्रोता सुभाष गुदारा, विमला गुदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गुदारा और सत श्री अकाल जी, प्रोग्राम दिल चाहता है लाइव सुन रहे हैं, रात नूं सारे काम निपटा के इस प्रोग्राम नाल असीं जुड़ जाने हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच तमाम दोस्तों का। दोस्तों समा जिहड़ा है साढ़े को हजे पे ने, पूरे 10 मिनट पे ने, तुसीं आराम दे नाल प्रोग्राम दे विच जुड़ सकते हो, तो बस तुसीं सानूं साढ़े वट्सअप नंबर 9855101023 मैसेज भेजना है। ठीक है जी, सो आपां इस तरह करते हैं कि एक गाना कोई रेंडम जिहड़ा है, एक होर मैसेज आ गया वी लै लैंदे आ। दिल चाहता है बहुत से राम साहिब शर्मा राणो, पंजाबी फिल्म का कोई भी गीत जिहड़ा सोंग सुना दो, मिस नहीं करना है मिस आपां करना ही नहीं, आपां तां वैसे लभ रहे सीगे कि कोई फरमाइश जिहड़ी आवे जिहड़ी आपां उस टाइम प्ले कर दी है, राणो का गाणा असीं लगा दिंदे आ, इन बिटवीन असीं अगला गाणा लभदे आ।

न जाने किसकी हमें उम्र भर तलाश रही, न जाने किसकी हमें उम्र भर तलाश रही, जिसे करीब से देखा वो दूसरा निकला। एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज से इस वेले रात दे 10:01 हो चुके ने, तुसी सुन रहे हो एफएम रेनबो ते प्रोग्राम शामे गजल। इस प्रोग्राम नू लेके हाजिर हो चुका है तुहाडा दोस्त मोहित रूबल। ते आओ प्रोग्राम दे विच सब तो पहली गजल जिहड़ी है असी उसका आनंद माणदे हां, जो कि गाई है गुलाम अली साहब ने।

जी दोस्तों, एंजॉय करें प्रोग्राम शामी गज़ल रात दा। समा हो चुके 10:10। सो एक बड़ी खूबसूरत गज़ल है खलील उर रहमान आज़मी साहब दी कि बने बनाए से रस्तों का सिलसिला निकला, बने बनाए से रस्तों का सिलसिला निकला, नया सफ़र भी बहुत ही गुरेज पा निकला। न जाने किसकी हमें उम्र भर तलाश रही, जिसे करीब से देखा वो दूसरा निकला। कि हमें तो रास ना आई किसी की महफिल भी, हमें तो रास ना आई किसी की महफिल भी, कोई खुदा कोई हमसाया एक खुदा निकला। हमारे पास से गुजरी थी एक परछाई, हमारे पास से गुजरी थी एक परछाई, पुकारा हमने तो सदियों का फासला निकला। क्या बात, बड़ी ही खूबसूरत गजल जो है खलील उर रहमान आज़मी साहब दी, जो कि मैं पढ़ने की कोशिश की थी। सो एंजॉय करें प्रोग्राम शामी गजल।

मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, कुछ बता दे जिंदगी ए जिंदगी। मैं कहाँ हूँ, कुछ बता दे जिंदगी ए जिंदगी, फिर सदा अपनी सुना दे जिंदगी ए जिंदगी। कि सो गए एक एक करके खाना ए दिल के चिराग, सो गए एक एक करके खाना ए दिल के चिराग, इन चिरागों को जगा दे जिंदगी ए जिंदगी। वो बिसाते शेरो नगमा रत जगे, वो चह चहे

वो बिसाते शेरो नगमा रत जगे वो चह चहे फिर वही महफिल सजा दे जिंदगी ए जिंदगी कि जिसके हर कतरे से रग रग में मचलता था लहू जिसके हर कतरे से रग रग में मचलता था लहू फिर वही एक शय पिला दे जिंदगी ए जिंदगी। अब तो याद आता नहीं कैसा था अपना रंग रूप अब तो याद आता नहीं कैसा था अपना रंग रूप फिर मेरी सूरत दिखा दे जिंदगी ए जिंदगी। कि एक मुद्दत हो गई है रूठा हूं अपने आप से एक मुद्दत हो गई है रूठा हूं अपने आप से फिर मुझे मुझसे मिला दे जिंदगी ए जिंदगी।

जी दोस्तों, एंजॉय करें प्रोग्राम शामी गज़ल। फिलहाल समझ कर रात दे 10:26 हूँ। एंजॉय करने इस प्रोग्राम की आखिरी गज़ल बड़ी खूबसूरत आवाज़ दिलराज कौर जी थी।

सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं। सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं। मांगा खुदा से रात दिन, तेरे सिवा कुछ भी नहीं। देखा तुझे, सोचा तुझे, चाहा तुझे, पूजा तुझे, मेरी खाता, मेरी वफा, तेरी खाता कुछ भी नहीं। कि जिस पर हमारी आंख ने मोती बिछाए रात भर, जिस पर हमारी आंख ने मोती बिछाए रात भर, भेजा वही कागज उसे हमने लिखा कुछ भी नहीं। एक शाम की दहलीज पर बैठे रहे वो देर तक, एक शाम की दहलीज पर बैठे रहे वो देर तक, आंखों से की बातें बहुत, मुंह से कहा कुछ भी नहीं। दो चार दिन की बात है, दिल खाक में सो जाएगा। दो चार दिन की बात है, दिल खाक में सो जाएगा। जब आग पर कागज रखा, बाकी बचा कुछ भी नहीं। एहसास की खुशबू कहाँ, आवाज के जुगनू कहाँ। एहसास की खुशबू कहाँ, आवाज के जुगनू कहाँ। खामोश यादों के सिवा घर में रहा कुछ भी नहीं।

प्यारे दोस्त, एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है अपने दोस्त मोहित रूपल के नाल।

प्यारे दोस्त, इंजॉय कर रसी प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज से अपने दोस्त मोहित रूबल के नाल। दोस्तों, इस वक्त समा हो चुका है 10:55:45। आओ हुण इंजॉय करते हैं इस प्रोग्राम का आखिरी गीत।